नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे मुसाफिर को देखा है जो किसी दूर देश के एक अनजान और विशाल मेले में आ गया हो? जब वह उस मेले में कदम रखता है तो वहाँ की रंग बिरंगी रोशनियाँ, दुकानों का शोर, नाच गाने और तमाशे उसे इतने लुभावने लगते हैं कि वह पूरी तरह उनमें खो जाता है। वह चीज़ें खरीदने लगता है, तमाशों की भीड़ में धक्के खाता है, लेकिन जब रात गहरी होती हैं, मेला उजड़ने लगता है और सब दुकानें बंद हो जाती हैं, तब अचानक उस मुसाफिर को याद आता है कि अरे, मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं था, मेरा असली वतन तो कोई और था। पर अफसोस कि तब तक वह उस भीड़ भाड़ और गलियों के जाल में अपने घर का रास्ता पूरी तरह भूल चुका होता है। हमारी जीवात्मा की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हम उस परमानंद के अमर देश से इस संसार के मेले में आए थे, लेकिन यहाँ की माया, रिश्तों और चिंताओं में ऐसे उलझे कि अपने मूल घर का पता ही भूल गए। कबीर साहब आज हमें उसी मूल देश की याद दिलाने और इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने आए हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह सूत्र। कौन देश कहाँ आइया, कहूँ

क्यों जाना जाई, ओहु मार्ग पावे नहीं, भूली पड़े इस माही। कौन देश कहाँ आया।

हैं। श्रोताओं, कबीर साहब मनुष्य की आत्मिक पहचान पर एक परम दार्शनिक प्रश्न उठाते हुए कहते हैं, कौन देश कहाँ आया। हे जीव, तू जरा विचार कर कि तू कौन देश यानी किस परम पावन अविनाशी अमर लोक का रहने वाला था और कहाँ आया, यानी इस काल और नश्वरता के अंधकार में मृत्युलोक में कहाँ आकर गिर पड़ा। कहूँ क्यों जाना जाए, और उस अगम अनाम देश के स्वरूप को यह सांसारिक चर्म चक्षु और सीमित बुद्धि भला क्यों जाना जाए, यानी कैसे जान और समझ सकती हैं। इस जीव की सबसे बड़ी विडंबना को अगली पंक्ति में उजागर करते हुए कहते हैं, वह मार्ग पावे नहीं, अपने उस शाश्वत निज धाम उस आत्मस्वरूप तक वापस लौटने का वह मार्ग यानी वह गुप्त आंतरिक राजमार्ग इस जीव को सूझता ही नहीं, मिलता ही नहीं। भूली पड़े हम माही, क्योंकि यह सांसारिक विषय वासनाओं देह अहंकार और झूठे प्रपंचों के दलदल में ऐसा भूली पड़े यानी इस कदर खो चुका है कि इसने इसी किराए के सराय को अपना असली घर मान लिया है। यह दोहा सूफी मत के वतन ए असली और वेदांत के अध्यास तथा अविद्या का महाविश्लेषण है। उपनिषदों में भी जीव को अमृतस्य पुत्रा अर्थात अमृत की संतान कहा गया है। आत्मा मूलतः शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वरूप है, लेकिन माया के प्रभाव से वह खुद को यह हाड़मास का शरीर और इस संसार का कैदी मान बैठती हैं। यह मारक प्रतीक है उस अंतर्मुखी सुषुम्ना और अनहद नाद के मार्ग का, जो सदगुरु के ज्ञान से ही प्रकट होता है। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि जब तक साधक अपनी इस मूल पहचान को नहीं खोजता, तब तक वह चाहे जितनी सांसारिक महल बना लें, वह एक भटका हुआ परदेसी ही बना रहेगा। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर खुद से यह बुनियादी सवाल पूछिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। क्या हमारा अस्तित्व केवल इन चंद सांसारिक उपाधियों में पैसों मकानों और रिश्तों तक ही सीमित हैं? हम इस संसार की पराई जमीन को सजाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमने अपने शाश्वत घर की कोई सुध ही नहीं ली। आज कोशिश कीजिए अपने उस असली वतन की खोज शुरू करने की। इस संसार के झूठे आकर्षणों में खोने के बजाय अपनी चेतना को अंतर्मुखी बनाइए। सदगुरु के वचनों का दीपक हाथ में लीजिए और उस राम नाम की पगडंडी पर चलिए जो सीधे आपको आपके मूल आत्मस्वरूप से मिला देती हैं। जब आपको अपने असली घर का मार्ग मिल जाएगा तो इस भवसागर का सारा भटकाव एक ही पल में समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम।

नमस्कार, ओम शांती। वर्षात सगळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता। कितनी बढ़िया लाइन है, उसके ऊपर हमने चिंतन किया। वर्षत सकल मंगली, मांगल्य का वर्षा, वो भी सदा हमेशा के लिए, कभी कभी नहीं है। ऐसी स्थिति जब आएगी तब स्वर्ग की नींव तैयार हो जाएगी। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, माउली कह रही है। यह स्वर्ग की नींव क्यों तैयार हो जाएगी? क्योंकि हम हमेशा जब भी इसके ऊपर चिंतन करते हैं तब उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि मावली का जो विजन है वो सुखमय है। ये दुनिया जो है, संसार जो है, वो सुखमय हो, ऐसा उनका विजन है, ऐसी उनकी इच्छा है, ऐसी उनकी प्रार्थना है, ऐसा उनकी विश्वास है, ऐसा उनका विश्वास है। और इसलिए वो विश्वात्मक देव के पास प्रार्थना करते हैं, डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सब सुखमय हो। और सुखमय होने के लिए क्या लगेगा या कैसा ये सुखमय होगा, उसकी फर्स्ट स्टेप है वर्षत सुकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता। अभी देखिए, हमें अगर कोई एक भी आदमी मिलता है तो हम बोलते हैं भगवान ने आपको भेजा है। मराठी में कहते हैं देवासारखा भेटलास, देवा सारखा, भगवान जैसे आप मिले हैं, भगवान नहीं मिले। क्योंकि भगवान ऐसी चीज है कि हमने कभी उनको देखा ही नहीं, या समझा ही नहीं, या जाना ही नहीं, या अगर कोई कहता है भगवान को मिलने के लिए इच्छा तो सब रखते हैं, लेकिन सचमुच मिल गया तो मन में कहीं ना कहीं हमने फिक्स करके रखा है कि भगवान तो मिलने वाला नहीं है, वो ऐसे ही कहते हैं। और इसलिए अगर सचमुच भगवान मिल भी गया तो कई लोग या हम उसके ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे। तो भगवान मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी पहचान क्या है? भगवान को मिलाने के लिए ऐसे लोग आपके पास आएंगे। वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी। अभी ऐसे बहुत जो लोग हैं वो टू बी और नॉट टू बी में फंसे हैं, उनके लिए माउली कहती है एक दिन ऐसे आएगा। वर्षत सकल मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी। ईश्वर निष्ठ लोग जो है, जो ईश्वर से आपकी मुलाकात करवा देंगे या ईश्वर से मिलवा देंगे, ऐसे लोग है उनकी मांदियाळी लग जाएगी। मांदियाळी मीन्स एक दो तीन नहीं, समुदाय। इतने लोग होंगे कि वो आपके पास आएंगे और हमेशा मांगल्य का वर्षाव करेंगे आपके ऊपर। तो क्या होगा? खुशी होगी ना? तो एक वो जो लाइन पूरी होती है, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता। अभी उसके आगे की लाइन जो है वो बहुत कैची है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये लाइन पहले मैं बोलता हूं। चलांग कल्पतरुण से आरव, चेतना चिंतामणि से गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषान से। व्हाट्सएप पे हमारा एक ग्रुप है और मेरे एक मित्र श्री शांताराम चास्कर, उन्होंने ये ग्रुप में डिस्कशन करते करते ये लाइन पूछी थी। उसका अर्थ कुछ उन्हें डिस्क्रिप्शन वाइज चाहिए था। इसके ऊपर मैंने लिखना थोड़ा मुश्किल लगा तो ये कल्पना आ गई कि ये बोलेंगे, बोल के अगर ये उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे या शेयर करेंगे अपने भावना, अपने विचार, तो ज्यादा अच्छा लगेगा पूरे ग्रुप को, जो मेरे मित्र हैं उनको अच्छा लगा। ये कल्पना अच्छी लगी और ऐसा ये पसायदान जो है, जो आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं, 12 एपिसोड, 13 एपिसोड हो गए हैं, ये 14वां है।
तो उसकी शुरुआत जो है, हर किसी कर्म की, हर किसी कार्य की शुरुआत होने के लिए कुछ ना कुछ निमित्त हो जाता है, लग जाता है। ऐसे ही हमारे मित्र जो है शांताराम चास्कर, वो उसके लिए निमित्त हो गए हैं, और इसलिए ये पंच लाइन है, चलांग कल्पतरुन से आरव, चेतना चिंतामणिन से गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषान से। देखिए चलांग, चला कल्पतरुन से आरव, कल्पतरु, ये कल्पतरु जो है ये भी कवि कल्पना है। ऐसी बहुत सारी कवि कल्पना हम सोचते हैं, हम ये भी कहते हैं कि स्वर्ग भी कवि कल्पना है, स्वर्ग वैसे कोई होता नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न कहते हैं, या स्वर्ग था, स्वर्ग है, या ऐसे ही कवि कल्पना है, क्योंकि जो हम कहते हैं स्वर्ग में गए, कोई भी गुजर गया तो कभी आपने सुना है कि वो नरक में गया बोलते हैं? नहीं, वो कहते हैं स्वर्ग में गया। एटलीस्ट हमारी भावना है, हमारी इच्छा है स्वर्ग में जाने की, तो स्वर्ग कहीं ना कहीं होगा। और ऊपर हम देखते हैं, ऊपर स्वर्ग है, ऊपर स्वर्ग है, यही गड़बड़ है। ऊपर है, लेकिन चक्र, अगर ये साइकिल है ना, ये सब साइकिल, साइक्लिक है, सृष्टि चक्र बोलते हैं। दिनमपि रजनी सायं प्रातः पुनरवसंतो पुनराजया, या पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाही मोरारे। ये भी चक्र है, जैसे दिन और रात चक्र है, ये ऋतुओं का चक्र है, वैसे ये युगों का भी चक्र है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। अभी चक्र में, या हम मेरी गो राउंड में बैठते हैं, जब मेरा झूला टॉप में रहता है तब दूसरे का झूला बॉटम में रहता है, और जब मैं बॉटम में रहता हूं तो दूसरे का टॉप में रह जाता है। तो अगर स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है और ये चक्र है, तो सतयुग, जब ये मैं कलयुग में हूं, तब सतयुग कहां रहेगा? वर्चुअली ऊपर रहेगा। और इसलिए हम सोचते हैं कि स्वर्ग ऊपर है, स्वर्ग ऊपर नहीं है। जैसे सूरज जो है या चांद जो है, बचपन में हम देखते थे कि जैसे जैसे मैं ग्राउंड पे चलता था तो चांद जो है वो मेरे सर पे रहता था, और मुझे लगता था कि मेरे साथ साथ वो चल रहा है, वो चल रहा है। चांद मेरे साथ नहीं चल रहा है, मैं चांद को देख सकता हूं, लेकिन यहां क्या है, कलयुग जो है, कलयुग में बैठा हूं, तो कलयुग के साथ स्वर्ग नहीं चल रहा है, स्वर्ग अलग है, क्योंकि वो युग अलग है। और इसलिए हमें लगता है कि यह स्वर्ग ऊपर है। अभी धरती पे स्वर्ग उतर आएगा, और इसलिए ऐसे बहुत सारे जो पेड़ है, प्राजक्त है, पारिजात, ये भी कहते हैं स्वर्ग से आया, अमृत स्वर्ग से आया, गंगा स्वर्ग से आई, और ये जो कल्प वृक्ष है ये भी हम कहते हैं स्वर्ग से आया। ये कल्प वृक्ष क्या कहता है या क्या करता है? कल्प वृक्ष ऐसा है कि उसके नीचे आप बैठो और कोई भी कल्पना करो तो ये कल्पना पूरी हो जाती है। तो ऐसा कल्प वृक्ष, ये कवि कल्पना है या नहीं है, उसके ऊपर हम भले बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये ऐसा कल्प वृक्ष अगर हमें मिलेगा तो क्या बाहर आएंगे? आप कल्पना करो, पूरी हो गई, लेकिन उसके लिए भी प्री कंडीशन है, जो हमने पिछले लाइन में देखी थी, विश्व स्वधर में सूर्य पाहो, जो जे वांछील तोते लाहो प्राणी जात। जब आप विश्व स्वधर में सूर्य को देखते हैं, सारा विश्व जब अपने स्वधर में स्थित होके सूरज को या भगवान को देखते हैं, तो बुरी कल्पना, बुरा विचार, बुरी इच्छा मन में पैदा ही नहीं हो सकती। इसलिए जो जे वांछील तोते लाहो प्राणी जात,
वैसे कल्प वृक्ष के नीचे अगर हम बैठेंगे, भगवान को देखते हुए बैठेंगे, विश्वात्मक देव को याद करते हुए बैठेंगे, तो मन में बुरे विचार आएंगे ही नहीं। सर्वे सुखन संतु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यंतु, मां कश्चित दुख मापनीया। यही विचार आएगा कि सबका कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, बाकी सबका भी कल्याण हो। ये विचार आके, ये विचार लेके, ये संकल्प लेके अगर मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठूंगा, ये कल्प वृक्ष कल्पना का वृक्ष ऐसा नहीं है। कल्प वृक्ष मीन सारे कल्प, जो चार युगों का जो एक कल्प माना जाता है, ये कल्प जिसमें समाया हुआ है ऐसा कल्प वृक्ष है। और माउली चलांग कल्प तरुण से आरव, चेतना चिंतामणिन से गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषान से। तो माउली जो वर्णन करती है, देखिए कवि जो होता है ना, वो कवि जो वर्णन करता है तो कहीं कसर बाकी नहीं छोड़ता, पूरा का पूरा भरपूर कर देते हैं। और इसलिए माउली कहते हैं चलांग कल्प तरुण से आरव, कल्प तरु एक मिल गया तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बन गई, लेकिन माउली कहती है एक कल्प तरु से क्या होगा, यहां तो कल्प तरुण के बगीचे आ जाएंगे। आरव मीन्स बगीचा, गार्डन, गार्डन ऑफ कल्पतरु। और इतने कल्पतरु आपके सामने आ जाएंगे, वो कैसे हैं? चलांग कल्पतरु उनसे आरव, उसका मतलब क्या है? चेतना चिंतामणि से गाव, इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम शांति।

नमस्कार, ओम शांति। संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज माउली ज्ञानोबा राय, कितने नाम है और सब नाम प्यार से लिए जाते हैं। उनको माउली भी कहा जाता है, योगीराज कहा जाता है। और ऐसे योगीराज भगवान के पास कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं, जिसे हम पसायदान कहते हैं। और उस पसायदान के शब्दों के ऊपर हमारी चर्चा चिंतन शुरू है। क्यों करना है ये चिंतन और चर्चा? उससे रस मिलना है, फल है, बहुत सुंदर फल है, मधुर फल है। और हम सिर्फ देखते रहेंगे तो उसका आनंद नहीं ले सकेंगे। फल दूर से बहुत अच्छा दिखता है, रंग अच्छा है, रूप अच्छा है, लेकिन उसका रस जब तक नहीं लेंगे तब तक उसका आनंद नहीं मिलेगा। ऐसे ही ये माउली का जो पसायदान है उसका हम रस लेने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ रस लेना नहीं है, सबको बांटना है, क्योंकि ये रस मधुर है, ये रस शक्तिशाली है। और ये शक्तिशाली रस जब हम लेंगे तब हमारे मन को भी शक्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा। आम का सीजन रहता है तब घर में मेहमान आते हैं, आम की खुशबू तो दूर तक चली जाती है। और जब मेहमान को हम आम काट के देते हैं तो कितनी खुशी होती है, देने वाले को भी खुशी और लेने वाले को भी खुशी। तो ये आम जैसा ही मधुर फल है पसायदान, और उसका हम आनंद ले रहे, रसास्वाद ले रहे हैं। और इसमें माउली ने जो वर्णन किया है, इसके ऊपर हमारी पिछले एपिसोड में चर्चा थी। चला अंकल्प तरुण से आरव, चेतना चिंता मणिन से गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषान से। कल्पतरु के ऊपर हमारा चिंतन शुरू था, पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि ये कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष क्या है इसके ऊपर हमने कुछ चर्चा की। कल्प वृक्ष जो है वो पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि कल्पना में वृक्ष ऐसे नहीं है, सारे कल्प में वृक्ष है और सर्व कल्पना पूर्ण करने वाला भी वृक्ष है। क्योंकि ये वृक्ष को भी बहुत सारे नाम हैं, छोटा रहता है तब पौधा कहते हैं, रोप्ट, मराठी में रोप्ट कहते हैं पौधा। फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसे झाड़ कहते हैं। और फिर झाड़ जब हो जाता है तब फल देना शुरुआत हो जाती है, लेकिन जो रसदार फल आते हैं, मैच्योरिटी बोलते ना हम, मैच्योर्ड, वो है अनुभव, वो है वृक्ष। और ये वृक्ष सिर्फ फल नहीं देता, छाया भी देता है और सबको प्राण वायु भी देता है। जो कोई उनके संपर्क में आता है उसे कुछ ना कुछ देता ही है। और देखिए, ये वृक्ष जो है, एक बहुत अच्छा सुना था, आपने भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि छोटा बच्चा रहता है और वृक्ष को पत्थर मारता है, उसके बदले में वृक्ष क्या देता है, उसको फल देता है। पत्थर मारने के बाद रिटर्न में फल देता है, हम क्या करते हैं? और इसलिए वृक्षवल्ली अम्हा सोयरे वनचरी, संतों ने वृक्ष की महिमा की, पर्यावरण के लिए वृक्ष रहता है। और ये वृक्ष जो है, मानसिक पर्यावरण भी हमारा बहुत है, प्रदूषण, मानसिक प्रदूषण भी बहुत है। जैसे वृक्ष प्रदूषण कम करते हैं, वातावरण में जो प्रदूषण है वो कम करते हैं, वैसे हमारा मानसिक प्रदूषण भी बहुत हो गया है।
नकारात्मक विचारों का प्रदूषण बहुत हो गया है, और ये विचारों का प्रदूषण अगर दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? चला कल्प तरुण से आरव चेतना चिंता मणिन से गाव। ये कल्प तरु जो है, कल्प वृक्ष जो है, वो सिर्फ अगर हम उसके तल में उसके पास बैठेंगे तो भी बहुत प्राणवायु मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, सकारात्मक चिंतन होगा। ये कैसे वृक्ष है ये? और सबसे अच्छा जो लगा मुझे कल्प वृक्ष का जो नाम शब्द यूज किया है, और एक कल्प वृक्ष है, और एक वृक्ष है गीता में उसका उल्लेख है, ऊर्ध्व मूलाथ शाखम अश्वत्थम प्राहुर्रफयम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित। ये जो वृक्ष है वो उल्टा है, ऊर्ध्व मूल उसका मूल जो है वो ऊपर है और शाखाएं जो है वो नीचे है, ये भी वृक्ष है। और ये वृक्ष जो है और उसका मूल है मूलाधार, जब तक मूल तक नहीं जाते हैं तब तक उसका आधार नहीं मिल सकता है, और अगर मूल जड़ मजबूत हो तो वृक्ष भी मजबूत हो जाता है। अगर जड़ में कुछ क्षति उत्पन्न होती है तो वृक्ष ठीक नहीं रहता। तो ऐसे हमारा वृक्ष जो है कल्प वृक्ष, ये कल्प वृक्ष है। और ये भी कैसा है, एक अभी देखिए, अगर वृक्ष है, वृक्ष के फल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मुझे वृक्ष के पास जाना पड़ेगा और फल लेने पड़ेंगे। मेरे घर के आंगन में वृक्ष है और मैं कहीं बाहर गया हूं और मुझे फल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मुझे घर आना पड़ेगा, आंगन में जाके फल से, वृक्ष से फल लेने पड़ेंगे। लेकिन यहां तो माउली ने कहा है ये वृक्ष जो है, कल्प वृक्ष जो है, वो चलांग कल्प तरुण से आरव, चाल चलते है, मराठी में कहते चालते बोलते, चलते फिरते जो है, मींस खाली किताब में जो वर्णन है ये नहीं है, वो प्रत्यक्ष है। और ये कल्प वृक्ष जो है वो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो कल्प वृक्ष आपके पास आएगा और आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। लेकिन ये मनोकामना कैसी होगी उसका फिर देखिए, हर बात का कनेक्शन, हर शब्दों का कनेक्शन एक दूसरे से है। विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो से जाओ कनेक्शन है, जो जेवांछील तो तेला हो, आपकी कल्पना, जैसे आप कल्प वृक्ष के संपर्क में आएंगे तो आपकी इच्छा भी पवित्र होगी, आपको अच्छा बनाने के लिए इच्छा होगी और सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए कहते हैं अच्छा अच्छा कहो तो अच्छा हो जाता है। और ये अच्छा अच्छा कहो कहने के लिए कल्प वृक्ष, चलांग कल्प तरुण, चलते फिरते वृक्ष जो है, कल्पनी के कल्प वृक्ष जो है, सिर्फ कल्पना के नहीं है, प्रत्यक्ष है, क्योंकि चलते फिरते है, वो आएंगे। कब आएंगे? वो दो तरीके हैं, जब कल्प वृक्ष ऐसे, और वो भी एक नहीं है, चलांग कल्प तरुण से आरव, आरव बगीचा, और इतना बगीचा, बगीचा देखिए, बगीचे में तीन झाड़ भी हो जाते हैं और बहुत सारे पेड़ हो जाते हैं, बहुत सारे वृक्ष हो जाते हैं। और वृंदावन गार्डन जैसे कहते हैं ना हम बेंगलोर में, जो मैसूर में वृंदावन गार्डन है, कितनी बड़ी गार्डन है, ऐसे अगर आरव बगीचा इतने वृक्ष होंगे तो एक दूसरे को देंगे। सिर्फ लेने की भाव नहीं है, देने का भी भाव है। इसलिए अगर दो कल्प वृक्ष एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या होगा? और ऐसे कल्प वृक्ष का बगीचा अगर चलते फिरते हमारे पास आएगा तो क्या होगा? निगेटिविटी रहेगी? बिल्कुल ही नहीं रहेगी। और ये कल्प वृक्ष, चलांग कल्प तरुण से आरव, ये बगीचा जो है, वो बगीचा जब होगा
तब सतयुग आएगा, और सतयुग जो है, जो स्वर्ग की संकल्पना है, वहां भी हर मनुष्य जो होगा वो कल्पतरु जैसे होगा, कल्प वृक्ष जैसे होगा, और ये उनका एक नहीं हजारों होंगे, और इसलिए चलांग कल्पतरुन से आरव। फिर आगे चेतना चिंतामणि से गाव, चेतन क्या है, चिंतामणि क्या है, और बोलती जे आर्णव पीयूषान से, वो पीयूष क्या है, आर्णव क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे 16वें एपिसोड में। अभी ये 15वां एपिसोड पूरा हो गया है, अभी आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे 16वें एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। हमारे चेहरे की मुस्कुराहट बताती है कि रास्ता हमें मिल गया है, लेकिन मुश्किल ये है कि उस रास्ते पर चलना कैसे है। और यही जानने के लिए कि किस तरह से जीवन के इस रास्ते को बेहतर बनाकर हैप्पीनेस की जो हम बात करते हैं, खुशी की जो बात करते हैं, उसे इस पूरी जर्नी में तराशना है। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ फिर हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत। ओम शांति। शिवानी, हमने बात ये की थी कि डेस्टिनेशन जो है वो खुशी नहीं हो सकती, हमारा जो पूरा रास्ता है, पूरा प्रोसेस है, जो जर्नी है, दैट शुड बी हैप्पीनेस। और हम जो खास मुद्दों पर जिन पर बात करते आ रहे हैं वो है ट्रस्ट। आज हमने पहले से ही सोचा हुआ था कि हम, क्योंकि जो बात हमने की थी वो थोड़ी सी आधी ये थी कि जब रिश्तों में विश्वास नहीं रहता तो किस तरह से उन्हें हैंडल किया जाए।
1: विश्वास हमारा खुशी का लेकिन एक बहुत बड़ा आधार है। यू नो, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस, ट्रस्ट इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। इट इज, बिकॉज़ जितना आई विल ट्रस्ट, आई विल रिमेन इजी,
0: कंफर्टेबल,
1: बहुत कंफर्टेबल, और जीवन एकदम सरल बन जाती है एकदम, क्योंकि आपके पास वेस्ट थॉट की मार्जिन नहीं है ना। सी, थॉट्स जो सारे इतनी सारी चल रहे हैं, वेस्ट थॉट्स बहुत चलती हैं, कहीं ये ऐसा ना कर दे, कहीं और किया कुछ भी नहीं होगा सामने वाले ने, कहीं ये ऐसा ना कर दे, ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं सच बोल रहे हैं, पता नहीं इसमें इनका फायदा तो नहीं है, मतलब इट्स अ चेन,
0: कहां तक पहुंच जाता है,
1: बहुत दूर। एंड इतना सब टाइम में हम भारी हो गे। तो खुशी, व्हाट वी टॉक्ड अबाउट दैट डे, की खुशी ऑलरेडी है, चाहिए नहीं, वो ऑलरेडी है, ये सारी चेन ऑफ थॉट्स क्रिएट की वो लीक हो गई। तो ये सारी जो छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस की हैं, दीज आर वेज इन विच वी कैन सस्टेन दैट हैप्पीनेस। उस चाहिए नहीं लेकिन वो है, उसको कायम रखने की विधि क्या है। तो विश्वास रखना लोगों पर, अपने आप पर, परमात्मा पर, यू नो, लाइफ कैन बिकम सो सिंपल। थॉट के ये कोई मुझे चीट नहीं कर सकता, क्यों मुझे कोई चीट करना चाहिए, व्हाट इज अ लॉजिकल रीजन, कोई रीजन ही नहीं है। तो जीवन बहुत सरल बन जाती है उससे।
0: जीवन की सरलता की बात की तो सचमुच गुत्थियां उलझाने में जितना वक्त लग जाता है सुलझाने में, तो अगर वो सरल है, सिंपल है, सीधी राह है, तो उस पर चलना आसान हो जाता है। लेकिन हम जो एक पूरा प्रोसेस में अगर हम देखें तो हम ये देखते आ रहे हैं कि एक थॉट जो है वो जनरेट करता है डेस्टिनी को, और नेगेटिव बिलीव्स, यू नो, तो हमने ट्रस्ट से जुड़ी हुई जो बिलीव्स की बात की थी कि विश्वास तो किया ही नहीं जा सकता।
1: आज दुनिया विश्वास के लायक नहीं है, यू नो, दिस इज अ बिलीफ। लोग धोखा देते ही हैं, लोग हैं ही वैसे, तो ये बिलीफ है। तो
0: और अगर आप विश्वास करो तो आंख बंद करके विश्वास ना करो, एक आंख खोल के विश्वास करो।
1: वो फिर वही है कि गुस्सा मुझे नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा गुस्सा चाहिए, तो थोड़ा और ज्यादा की कोई मार्जिन ही नहीं है, अगर वो है तो है। तो अगर हम विश्वास नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, देयर इज नो सच थिंग एज, यू नो, एक आंख से डाउट करो और एक आंख से ट्रस्ट करो।
0: लास्ट टाइम, यू नो, इफ यू रिमेम्बर, वी हैड टेकन एन इशू वेयर एक जो एमएनसी में काम कर रहे थे और उनको अपने बॉस पे विश्वास नहीं था, उनको लगा था कि उनका विश्वास टूटा है। ऐसे अगर हम आज बात करें तो पति पत्नी के रिश्ते में, अभी तक ये कहा जाता था कि मेरी पत्नी बहुत डाउट करती है, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं होता मुझ पे कि, और पत्नियां मतलब एक वो मजाक का विषय, हमेशा एक जोक होता था कि मतलब मुझ पे विश्वास नहीं करती है, सारी कितनी कविताएं भी बनाई गई हैं इसके ऊपर। लेकिन आज सचमुच में पति हो या पत्नी हो फर्क नहीं रह गया है, विश्वास का जो एक इतना प्यारा मधुर रिश्ता था वो कहीं एक पूरा का पूरा डोर जो है ना वो टूट गई है। ये एक बात, इस पे मैं जानना चाहूंगी कि क्या हुआ है। दूसरा एक बात ये भी कही जाती है कि रहीमन धागा प्रेम का, कि अगर एक बार वो गांठ पड़ गई तो वो नहीं खुल सकती। ये
1: भी एक बिलीफ है।
0: हाँ
1: ये भी एक बिलीफ है कि एक बार अगर वो गांठ बंद गई तो फिर नहीं खुल सकती।
0: नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है।
1: और हम उस प्रोसेस में क्या कर देते हैं कि एक गांठ तो बंद गई, हम और इतनी सारी गांठें बांध देते हैं उसके अंदर। कितना सरल होता अगर हम उस एक गांठ को खोल देते, लेकिन हमने सोचा एक बार विश्वास टूटा, अब नहीं फिर हो सकता। Why?
0: क्यों नहीं हो सकता?
1: Why? Talk it out, sort it out, and it's back to normal. आखिर वो सामने वाला वो ही तो है इंसान जिसपे मैंने कितना विश्वास किया था। हो सकता है परिस्थिति कुछ और बनी, हो सकता है कुछ उसके मन में आया, कोई भी बात हो, लेकिन एक घटना से या एक परिस्थिति से हमारा वो विश्वास इतना कमजोर तो नहीं होना चाहिए ना कि वो बिल्कुल इतना इजीली टूट जाए.
0: और सबसे बड़ी बात है, हो सकता है मेरी तरफ से कुछ ऐसा रिस्पांस रहा हो.
1: राइट.
0: जब तक मैं बात नहीं करूंगा या करूंगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि हो सकता है मेरा कुछ ऐसा रिस्पांस.
1: एब्सोल्युटली. जिसने वो, और कभी कभी हो सकता है कि एक्चुअली कुछ भी नहीं है. ये मेरे अपने मन की परसेप्शन है. हम जैसा सोचते हैं कि दूसरा कर रहा होगा, हम बस उसको उसी दृष्टिकोण से देखते हैं. आप देखिए, दुनिया में कहते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड ट्रस्ट एंड वेरी इजी टू ब्रेक इट. It takes a long time to trust. It takes a second to break it. मतलब हम बहुत समय एक व्यक्ति को परखने के बाद उस पर विश्वास करते हैं.
0: I think we should reverse it.
1: Beautiful. That's exactly what it is. Yeah. It should be actually the opposite. It's not that it should be, but it's beautiful if it is.
0: Yeah.
1: It should be easy to trust and very difficult to break it.
0: Yes, you know, like
1: आप easily trust कीजिए, करते जाइए, आपको in return trust मिलता ही जाएगा. It is a law of karma. ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो energy आप देते हैं वही energy आपको return में मिलती है. ये हो सकता है कि आई गिव यू समथिंग, मेरे को आपसे कुछ डिफरेंट मिले, लेकिन दैट्स बिकॉज देन आई हैव गिवन दैट टू समवन एल्स. यू नो, दैट्स व्हाई मैंने पहले भी आपसे जो शेयर किया कि सभी के साथ वो एक ही लेवल ऑफ वो रखना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि 10 लोगों को बहुत मिसट्रस्ट करें, एक को जाके बहुत ट्रस्ट कर दे और फिर एक्सपेक्ट करें कि वो इन रिटर्न बहुत ट्रस्ट करे. दैट वॉन्ट वर्क. मेरी नेचर वो बन जानी चाहिए.
0: You know, trusting the other human being.
1: Yeah.
0: जिस भी being से मैं मिल रही हूँ,
1: right.
0: It's again a beautiful human being because
1: Absolutely.
0: I'm a beautiful human
1: Absolutely.
0: being.
1: अगर हम वही सोच लेकर चलेंगे that everybody is beautiful. You know, हर एक इंसान में कितनी अच्छाइयां भरी हुई हैं, उनको अच्छाइयों को देखते जाएं, उन पर विश्वास करते जाएं, तो ऑटोमेटिकली जिनसे भी हम मिलेंगे उनको एक अच्छी वाइब्रेशन हमारे साथ आएगी. और जब वो अच्छी वाइब्रेशन किसी को मिलती है तो अगर उसकी नेचर है भी धोखा देने की, वो आपको धोखा नहीं दे पाएगा.
0: That's a great trust actually. Yeah. You also have, you know,
1: yeah,
0: each individual.
1: बिल्कुल.
0: यहाँ एक ईमेल मैं लेना चाहती हूँ. हैदराबाद से हमें ये ईमेल आया है और राजीव मल्होत्रा ने मेल भेजा है. And it's a very interesting mail. He says कि मेरे वाइफ और मेरी मैरिज को 5 years हो चुके हैं. We've got a healthy relationship. We've been married for 5 years और उससे पहले का हमारा अफेयर भी था 3-4 साल का. मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो ऐसी ही वाइफ से शादी करना चाहता था, ऐसी लड़की से जो कि प्रोग्रेसिव है, जो अपनी नौकरी करती रहे और आगे ग्रो करे. और मैं ऐसा ही बना भी रहा, बनने की कोशिश भी करता रहा. लेकिन अब प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं आज तक अपनी वाइफ को भी नहीं कह पाया कि मैं अंदर से उसको लेके इनसिक्योर रहता हूँ. एंड कहीं ना कहीं कभी कभी मुझे लगता है कि वो लेट क्यों आती है, वो you know, जहाँ पे होना चाहिए ऑफिस की पार्टी में भी क्यों चली जाती है. बट आई कांट टेल इट टू हर बिकॉज आई फील कि वो कहेगी कि आप बड़े ट्रेडिशनल हैं, कन्वेंशनल हैं, यू आर नॉट लाइक दिस. एंड उसमें क्या होता है, फिर मैं कोल्ड हो जाता हूँ. आई एम रियलाइजिंग माई ओन प्रॉब्लम बिकॉज देर इज नथिंग एल्स. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं ट्रस्ट उसको नहीं कर पा रहा हूँ बहुत ज्यादा. तो क्या मैं गलत हूँ, क्या मुझे उसको कह देना चाहिए? क्योंकि अगर मैं कहूंगा तो मुझे ये लगता है कि वो समझेगी नहीं, और दूसरी तरफ ये हमारे रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं कोल्ड हो गया हूँ.
1: तो नेचुरल
0: रीजन नहीं
1: सामने देने वाले को तुरंत पता चल जाएगा.
0: लेकिन ये दिस इज अ प्रॉब्लम आई थिंक विद टुडेज मेट्रोसेक्सुअल मैन. यू नो, कि वो कहीं ना कहीं ग्रो तो करना चाह रहे हैं. जो आज औरत की आजादी है, दिस इज व्हाट आई फील अबाउट दैट शी हैज बिकम इंडिपेंडेंट. यू नो, वो अपनी इंडिपेंडेंट, दे आर हैप्पी विद इट. उसके साथ कंधा कंधा देने की कोशिश कर रहे हैं,
1: right.
0: उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन अपनी इनसिक्योरिटी
1: right.
0: वो क्यों नहीं शेयर कर पाते? दिस इज व्हाट आई फील.
1: ट्रू, बट दिस इज अ टिपिकल केस के जहां एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है. यू नो, कोई तो केस है कि जहां आपको एक्चुअली पता चल जाए कि योर वाइफ और योर हस्बैंड इज डूइंग समथिंग which is not agreeable with you, and तब आप mistrust करें. अब ये तो actually सिर्फ अपना ही वहम है, कुछ भी नहीं है.
0: नहीं, लेकिन क्योंकि ये बात नहीं करते हैं, that's what he says कि मैं इतना major depression में चला जाता हूँ, किसी से बात नहीं करता, और क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसे बात करूँ.
1: True.
0: लेकिन मैं ये जानते हुए भी कि मुझे अब विश्वास नहीं करना चाहिए.
1: लेकिन इस particular केस में इसका solution सिर्फ इनके पास है. इनकी वाइफ इनकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक्चुअली उसने कुछ किया नहीं है. यू नो, इट्स माई ओन सेल्फ क्रिएटेड assumption के हो सकता है, नहीं भी हो सकता, पता नहीं क्या है. तो अगर हम सामने वाले से जाकर बात भी कर ले और वो व्यक्ति कह भी दे कि जी ऐसा तो बिल्कुल कुछ नहीं है, it won't make too much of a difference.
0: Actually, deep within he knows कि ऐसा कुछ
1: क्योंकि उसे ये भी पता है कि actually कुछ नहीं है. लेकिन क्योंकि एक element of doubt ये जो अंदर बैठ गया है, इसका solution किसी और के पास नहीं है. उनकी wife भी अगर वो बात भी करें तो it will unnecessarily I think trigger off another episode. क्योंकि बहुत ज़्यादा इस case में result नहीं निकलेगा क्योंकि wife की assurance उनके doubt को नहीं खत्म कर सकती है. क्योंकि उसके पास कुछ प्रूफ करने के लिए है ही नहीं. यू नो शी नीड्स टू प्रूव इट नाउ. तो उनके पास प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं है. शी कैन ओनली से कि देयर इज नथिंग लाइक दैट. अब आपके पास चॉइस है, आप बिलीव करना चाहें तो आप कीजिए.
0: विद दिस केस तो आई थिंक अगर वो वाइफ नौकरी भी छोड़ देगी ना तब भी इनको वापस नहीं आ पाएगा.
1: एंड एक्चुअली दैट्स नॉट द सॉल्यूशन. सी जो आपने कहा अर्लियर केस में भी जब वाइफ्स घर पे होती थी और हस्बैंड बाहर जाते थे तब वाइफ हस्बैंड पे डाउट करती थी क्योंकि सारा दिन एक सोच है पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, पता नहीं किन किन लोगों से मिलते हैं. नाउ वो चीज दोनों पर एप्लीकेबल है क्योंकि दोनों वर्किंग है तो दोनों सोच रहे हैं पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं. इसका इलाज किसी के पास भी नहीं है. सिर्फ मेरे अपने पास है. क्या रीजन है मुझे अपने आप से पूछना पड़ेगा. व्हाट इज द रीजन दैट आई एम डाउटिंग द अदर पर्सन. क्यों आई हैव टू गिव एन आंसर. एंड अगर आई एम नॉट एबल टू गिव माई सेल्फ एन आंसर, आप कितने भी दिन लगा दीजिए अपने साथ, बार बार अपने साथ पूछिए क्या रीजन है, सामने वाले ने ऐसी कौन सी चीज की है जिससे मेरे मन में ये क्वेश्चन उठा है. अगर आपको कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल जाता है आप उसको बात करके क्लैरिफाई कर लीजिए. लेकिन अगर आपको कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता देन पुट योरसेल्फ इन द अदर पर्सन्स प्लेस कि अगर आपकी वाइफ आपके बारे में ऐसा सोच रही होती आप कैसे कन्विंस करते.
0: कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते एक्चुअली.
1: और आपको अगर कन्विंस करना पड़ता आप कैसे कन्विंस करते. सेम कन्विंशन अपने आप को दीजिए कि वाई. अगर मुझे कोई रीजन नहीं मिल रहा है, उसने कुछ भी ऐसी एक भी एक्शन नहीं की है जिससे कुछ लगे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, व्हाई एम आई डाउटिंग, दैट्स माय नेगेटिविटी. मेरे अंदर ट्रस्ट की कमी है, सामने वाले की कोई गलती नहीं है. और ज्यादातर ऐसा होता है कि इफ ही टेल्स हिज वाइफ नाउ द वाइफ हैज नथिंग टू प्रूव
0: एंड शी विल नॉट लाइक इट. यू नो द दूरियां और बढ़ती जाएंगी.
1: एंड यू नो एट अ पॉइंट पर्सन कैन से कि आपकी चॉइस है, आप ट्रस्ट करना चाहें करें, नहीं करना चाहें नहीं करें, आई एम दिस वे. यू नो एंड अगर जितनी देर आप नहीं करते आप खुद ही अंदर घुटते रहते हैं. एक्सेप्ट कीजिए और ये जो अभी डाउट का सीड जो ग्रो हो रहा है इसको जितना जल्दी वो निकाल कर फिनिश कर देंगे, नहीं तो अगर कुछ नहीं भी था अब हो जाएगा.
0: यस यू नो एंड इनफैक्ट ये जो आज की व्यक्ति
1: क्योंकि नॉर्मल जैसे उन्होंने कहा कि कोल्डनेस आ रही है मतलब आप दो लोग दूर हो रहे हो. जहां आप दो जने दूर होने लगे वो वाइफ और लोगों से फ्रेंडशिप छोड़ेगी. वो कहेगी जी घर जाके क्या करना है, वही बातें वही झगड़ा, मेरे से तो बात भी नहीं करते हैं. मतलब नथिंग एनीथिंग रॉन्ग बट शी विल स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम इन द ऑफिस, शी विल स्टार्ट सोशलाइजिंग मोर बिकॉज देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू व्हेन शी गोज होम.
0: अच्छा इनफैक्ट सेम थिंग कैन हैपन टू हिम यू नो बिकॉज ही इज गोइंग इनटू हिज ओन शेल.
1: राइट
0: समबडी कम्स
1: राइट
0: इन हिज लाइफ हु इज एबल टू ब्रेक दैट.
1: बिल्कुल
0: ही विल गो विद हर
1: क्योंकि वो इमोशनली बेंड हो जाएंगे ना दूसरे की तरफ. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो सीड को ग्रो होने नहीं दो एंड रियलाइज कि मेरी लाइफ का ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है.
0: बट आई थिंक फर्स्ट स्टेप ही हैज टेकन इज एट लीस्ट ही हैज एक्नॉलेज्ड एंड हैज रिटन.
1: एब्सोल्युटली. तो मोस्ट ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी डन.
0: यस यू नो बिकॉज इट मींस द मोमेंट यू एक्नॉलेज इट देयर इज समथिंग रॉन्ग इट मींस यू गो ऑन द.
1: और उनको खुद ही रियलाइजेशन ये जो मेल से लग रहा है कि उनको ऑलरेडी रियलाइजेशन है कि ये कुछ भी नहीं है, ये मेरा वहम है. तो अपने आप से बात करनी पड़ेगी कि ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें आधारित है, मेरा जीवन आधारित है. क्या मैं अपने वहम की वजह से इसको सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूँ, अपनी खुशी को पूरा त्याग करने के लिए रेडी हूँ. और फिर भी अगर चाहिए, फिर भी अगर कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा देन गो एंड टॉक. Go and talk to her. And अगर आप एक पॉजिटिव इंटेंशन से ना अगेन यू आर द इंटेंशन यू नो एक है कि मैं आपसे आकर बात करूं, ऐसा कुछ है. आप क्या करते हो, आप लेट क्यों आते हो, क्या जरूरत है पार्टी में जाने की. अटैकिंग मोड यू नो आप दूसरे को अटैक कर रहे हो, आप दूसरे को ये बताने की कोशिश कर रहे हो आई एम चेकिंग यू नो यू आर रॉन्ग. द अदर पॉजिटिव इंटेंशन विल बी यू नो आई नो यू आर नाइस, आई नो देर इज नथिंग रॉन्ग, मुझे पता है कि आप बिल्कुल मतलब कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, बट पता नहीं मेरी अपनी क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही है, कैन यू हेल्प मी, द होल एटीट्यूड विल चेंज एंड द वाइफ विल वॉन्ट टू हेल्प द हस्बैंड.
0: No, in fact, and I think he's one of the nice men.
1: Yeah,
0: you know,
1: बिल्कुल. Like, because, तो, but वो जो conversation करने से पहले intention को ठीक कर ले. कि if he's understood कि problem वहाँ नहीं, problem यहाँ है, he will have to accept that in front of the wife. कि you're absolutely fine. But you know,
0: problem.
1: You're my partner. And मुझे ये थोड़ी सी तकलीफ है. And I think the only person who can help me right now is you. You're my friend. तो बाहर किसी और friend से मैं जाके बात करूँ, इससे अच्छा बिफोर माई वाइफ योर माई फ्रेंड. यू नो एक फ्रेंडशिप का जो रिलेशनशिप अगर पार्टनर्स में ये डेवलप हो जाए, यू डोंट नीड अनदर फ्रेंड.
0: डेफिनेटली. एंड द वे नो
1: एंड एक्चुअली अ हस्बैंड वाइफ के बीच में आई डोंट थिंक दे नीड अनदर फ्रेंड.
0: यस डेफिनेटली.
1: योर पार्टनर शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड बिफोर being your life partner, he should be your best friend.
0: Yes, and in fact, ये कहा भी गया है पहले भी, you know, कि पति पत्नी के बीच में कोई नहीं आ सकता कभी भी, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं.
1: Absolutely, लेकिन जहाँ हम अपने मन की बात या अपने घर की बात फिर अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें लगता है कि हमें किसी और से करनी पड़ेगी, एंड पता नहीं फिर दूसरा जना क्या राय दे उसके लिए, एंड maybe the whole thing will go absolutely
0: astray. यहाँ तो शिवानी एक हमारे पास ये केस था जहाँ कुछ भी नहीं था,
1: कुछ भी नहीं था,
0: और उसके बावजूद मिस्ट्रेस थी जो इन्हीं को अपने एक शेल में लेकर जा रही है.
1: Right.
0: एक और हमें एक बच्चे ने कॉल किया. That's again amazing, you know, 11th class का वो स्टूडेंट है. I don't want to take his name. बहुत अच्छे स्कूल में दिल्ली में पढ़ रहा है. He says that when I was in 9th, मैं एक बुरी आदतों में पड़ गया था. मतलब क्योंकि मेरी मम्मी, शी इज अ यू नो समवेयर अ वाइस प्रेसिडेंट है, विदेशों में बहुत जाती है. मेरे फादर इज आल्सो डूइंग वेरी वेल, आईटी सेक्टर में है. आई हैव गॉट अ यंगर ब्रदर आल्सो, तो वी बोथ यूज्ड टू बी अलोन विद द मेट. तो मेरी कंपनी ऐसी हो गई थी कि मैंने यू नो ड्रिंक्स की तरफ चला गया था, स्मोकिंग की तरफ चला गया था, एंड आई वॉज इन टू यू नो लाइक ऑल दोज नेगेटिविटी. सो समवेयर मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई से खत्म हो गया था. तो जब तक मम्मी को एहसास हुआ इस बात का, तब तक मैं काफी डीप में जा चुका था. Because I was not interacting with my mother, but still, she is my best friend. He was very
1: positive towards
0: his mother, you know. One thing I really liked about when he called up was that he was very positive towards his parents. नहीं तो usually क्या होता है कि बच्चे negative हो चुके होते हैं. But he said that I was in the negative thing, but I was hiding. Yeah, I was into girls and everything. So when my mother came to know about it, she talked to me and she tried. तब तक 10th के boards आ गए थे, ये हो गया था, और मेरे boards में exam result बहुत अच्छा नहीं आया. अब मेरी माँ के साथ बातचीत के बाद, एंड यू नो मैंने खुद भी रियलाइज किया कि कहीं मेरा रिजल्ट ही इतना खराब आ गया तो मेरी जिंदगी आगे कहाँ जाएगी. एंड आई एम सपोज टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, दिस इज व्हाट ही सेड. अब मैं अच्छा बन गया हूँ, लेकिन मेरी माँ को अभी भी विश्वास नहीं है. अब मेरे को, मुझे फ्रस्ट्रेशन शुरू हुई है. कहते हैं मेरे को उस पूरे दौर में मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज माई मॉम हेल्प्ड मी आउट. लेकिन नाउ व्हेन आई एम बिकमिंग गुड, I am trying to do things right, you know, whatever is said right.
1: True.
0: I don't believe in it ki right hai ya wrong hai, lekin because my mom says ki aap raat ke 11 baje tak nahi bahar rahiye, to main maan leta hu, chaliye drinks aur booze aur ye sab kuch bhi nahi kar raha hu, apne doston ko bhi badla hai maine, but my mother doesn't you know believe in me. अब उस ट्रस्ट को मैं कैसे पा सकता हूँ, और मैं फ्रस्ट्रेट होने लग गया हूँ. और फिर मुझे लगता है कि फिर अगर यही है तो फिर मैं वही चीज़ें क्यों ना करूँ. दिस इज अ मेजर, जब तक वो प्रॉब्लम में था तब उसने हमें you know, ऐसी कोई काउंसलिंग की उसे जरूरत नहीं.
1: वो इट्स अ टिपिकल केस ना कि ट्रस्ट टूट गया. ये वो टिपिकल केस है ना जो हम कहेंगे कि टूट गया, अब इसको जुड़ने में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी ये जो ट्रस्ट फैक्टर है आज, वो थोड़ा सा मतलब रिसेंटली हमने सुना कि आजकल डिटेक्टिव्स को पेरेंट्स इम्प्लॉय कर रहे हैं या हायर कर रहे हैं, कि वो डिटेक्टिव उनके बच्चे के पीछे सारा दिन घूमते हैं. क्योंकि और फिर रात को एक फोन कॉल करके एक पूरी रिपोर्ट मिलती है, आपका बेटा या बेटी यहाँ गए, इनसे मिले, ये किया, वो किया, इतनी देर इनके साथ स्पेंड किया, व्हाटएवर द चाइल्ड्स entire day routine,
0: My
1: the detective
0: God.
1: is supposed to come and tell the parents. Of course, it's still in the very higher class families who can afford to hire these services. But the fact
0: but
1: is the trend has begun.
0: पैसा कितना कमा भी तो रहे हैं.
1: Right.
0: You know, middle class has actually grown.
1: True. लेकिन वो कमाने के process में वो bonding नहीं हुई, तो उस पैसे को इस तरह से use करना पड़ रहा है. तो एक बच्चे से हम डायरेक्टली नहीं पूछ पा रहे कि आपका आज का सारा दिन कैसा रहा, और अगर वो बता भी देता है तो हम सोचते हैं पता नहीं सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, और उसके लिए हम एक थर्ड पर्सन को यूज कर रहे हैं जो सारा दिन

0: कि हम मदर को नहीं चेंज कर सकते. यू नो, अगर हम उनसे बात कर रहे हैं, ही हैज टू अंडरस्टैंड ही कान चेंज हिज मदर, ही कान गो एंड टेल हर यू नो स्टार्ट ट्रस्टिंग मी. ट्रस्ट डिमांड करने से नहीं मिलेगा. आप किसी को बोलो मुझे ट्रस्ट करो, मुझे ट्रस्ट करो, ये नहीं होने वाला है. दूसरे की चॉइस है. मेरी चॉइस है कि मुझे उन्हें ट्रस्ट करना है, सो आई एम ट्रस्टिंग. उन्होंने मुझे कहा है लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन कंडक्ट. अब ये मेरी चॉइस है कि मैंने उसको एक्सेप्ट किया है. द थिंग इज कि जब हम कुछ करना शुरू करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट वी चोज इट. यू नो, लेट्स नॉट ट्राई एंड टेल अदर पीपल हम आपकी वजह से कर रहे हैं, बिकॉज वी नॉट रियली, वी नॉट. हम कभी भी किसी और की वजह से नहीं कर रहे होते हैं. भले अगर मैं ये भी आपको कहूं कि मैं आपके लिए कर रही हूं, लेकिन फिर भी ये मैंने चूज किया ना आपके लिए करना. आपने फोर्सफुली जब तक मेरे से आप नहीं करवाते, और कोई भी किसी से कुछ फोर्सफुली तो करा ही नहीं सकता. तो ये सारा दिन दूसरों पर जताना कि हम आपके लिए कर रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं, इट्स नॉट ट्रू. हम भले इंस्ट्रूमेंट हुए, लेकिन हम फिर भी अपने लिए कर रहे हैं. हमें अच्छा लग रहा है उनके लिए ये करना,
1: अपनी वजह से कर रहे हैं.
0: दैट्स ऑल आई हैव टू अंडरस्टैंड. तो जब मुझे ये समझ में आ जाएगा दिस इज माई चॉइस, Now I like to live that way. You know, अगर वो सोचेगा कि वो रात को 11 बजे अपनी मम्मी की वजह से आ रहा है, he is not going to like the idea. You know, वो अंदर ही अंदर फिर ये choice रहेगी कि मैं might as well फिर 1 बजे आऊँ. That's not the solution. आप खुद choose कीजिए. अगर आपको लगता है कि ये करके you are giving something to your mother, you know, you are making her happy or whatever, so you choose. अगर आपने choose कर लिया, it's your decision. अपने decision को regret नहीं कीजिए. ये आपका डिसीशन है. ये नहीं फिर एक्सपेक्ट कीजिए कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आई विल गो बैक टू द अदर चॉइस. ये तो मतलब ये तो अननेसेसरली अंदर फ्रस्ट्रेशन है.
1: लेकिन वो फिर उसको क्या करना चाहिए?
0: यू हैव चोजन टू कम बैक एट 11. यू हैव चोजन नॉट टू ड्रिंक और स्मोक और व्हाटएवर फॉर व्हाटएवर रीजन, इवन इफ इट्स योर मदर. लेकिन चॉइस आपकी है. अब आपकी मम्मी इन रिटर्न आपको अभी ट्रस्ट करे या नहीं करेंगे, वह सम टाइम. आफ्टर ऑल हमने कुछ एक छोटी मोटी गलतियां की भी तो है ना. उनका मिसट्रस्ट विदाउट रीजन नहीं है अभी, लेकिन हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं अगर, तो जस्ट गो ऑन डूइंग इट अनकंडीशनली. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट कि दो दिन में यू शुड एक्सपेक्ट कि सामने वाला चेंज हो जाए. गिव द अदर पर्सन टाइम. और आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो कीजिए. अगर आपको अच्छा लग रहा है नहीं ड्रिंक करना, तब आप कीजिए. और अगर आप वो सोचकर करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि अगर उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया तो माइट एज वेल मैं ड्रिंक करना शुरू कर दूं. ये तो कोई सोल्यूशन ही नहीं हुआ. तो आप अपनी चॉइस से कीजिए एंड यू नो रिमेन इन दैट पॉजिटिव स्टेट कि आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ, इट्स गुड फॉर मी, एंड कंटिन्यू डूइंग इट and wait for her to change.
1: And she will change.
0: She will.
1: The way we said unconditional trust, you know, unconditional love.
0: Absolutely.
1: These are the aspects which कंडीशन कि वो ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, तो मैं उतना प्यार कर सकता हूँ, तो मैं अगर वो मुझ पे विश्वास वापस कर ले तभी मैं
0: तो मैं करूँ. तो नहीं, हम करें तब वो विश्वास ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. अभी हमारे रिलेशनशिप्स हमेशा इस चीज पर बेस्ड हैं कि अगर मैं रिसीव कुछ करूंगा तो मैं गिव करूंगा. मुझे आपसे प्यार मिलेगा तो मैं आपको प्यार दूंगा, आप मुझे रिस्पेक्ट करेंगी तो मैं आपको रिस्पेक्ट करूंगी. कीप ऑन वेटिंग, कीप ऑन वेटिंग, इट इज नेवर एंडिंग. द सिंपलेस्ट थिंग इज आप देते जाइए विदाउट एक्सपेक्टिंग लेने का. आप देते जाइए, law of nature आपको वापस मिलेगा.
1: Beautiful.
0: आप respect देते जाइए
1: and
0: trust देते जाइए
1: and always remember that ये दे हम अपने कारण रहे.
0: And ये भी याद रखें कि मैं respect अपने लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उन्हें respect करना, मैं कर रहा हूँ. Not that मैंने तो दिया लेकिन उन्होंने तो नहीं किया, तो आप मत कीजिए. फिर आप उनसे लेने के लिए रिटर्न में कर रहे थे, नहीं आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है उनसे रिस्पेक्ट करना. ये जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है अपनी हर थॉट की और फीलिंग की, दिस कैन मेक माय लाइफ वेरी सिंपल एंड इट कैन मेक माय लाइफ विदाउट एक्सपेक्टेशंस.
1: ब्यूटीफुल. एंड इनफैक्ट द वे वी यू नो, ये सारी जो गलत मान्यताएं हैं कि मैं ये कर रहा हूं ताकि वो ऐसा करें, या मैं ऐसा इसलिए कर रहा ताकि उन्होंने कहा है,
0: right.
1: ये कंसेप्ट एक्चुअली बहुत क्लियर हो जाना चाहिए.
0: अपनी सोच और अपने बिहेवियर को चूज करके चलिए. इसलिए नहीं चले उन्होंने ऐसा किया तो मैंने बदल दिया, वो ऐसा करेंगे तो मैं बदल जाऊंगा. नहीं, माय बिहेवियर शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर पर्सन्स बिहेवियर. दिस इज मी, दिस इज माय बिहेवियर. यू कैन बी व्हाट यू वांट, बट आई विल बी व्हाट आई वांट.
1: एंड दिस इज द वे आई बिकम द मास्टर ऑफ माय डेस्टिनी
0: एंड आई एम मास्टर ऑफ माय ओन सेल्फ फर्स्ट.
1: यू नो
0: दैट इज व्हाट इट इज.
1: सो बहुत-बहुत शुक्रिया आज.

हमने एक्चुअली दो ऐसे रियल लाइफ केसेस लिए जो एक जहां हमने ये देखा कि कुछ है ही नहीं तब भी मिसट्रस्ट है, और जहां एक ट्रस्ट टूटी तो अब वो जो हैंकरिंग है कि मेरी वो ट्रस्ट वापस लौटे तो उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच शिवानी। जी हाँ, हमें बहुत कुछ ऐसा पता चल रहा है जिन पर हम अभी तक बिलीव करते आ रहे थे, जिन्हें मान रहे थे कि यही सही है, वो मिथ्स टूटते जा रहे हैं। इसी से हमारा पॉजिटिव जो एटीट्यूड है, पॉजिटिव थॉट्स का जनरेशन होगा, लेकिन उसे किस तरह से प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट करना है, कंटिन्यूस अपने आप को याद दिलाते रहना है, क्या छोटे छोटे वो तरीके हैं जो जिंदगी में अपना सकते हैं, यही रहेगा हमारा मुद्दा अगली कड़ी का। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी बात है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, किसी सवाल का जवाब तलाशना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन कीजिए 9873666555 पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो इसी के साथ वक्त है कि आज आपसे विदा लें, लेकिन इस दुआ के साथ और इस वादे के साथ कि जिन मूल्यों पर, जिन पॉजिटिव थॉट्स पर हम आज तक बात करते आ रहे हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और मैं अपना मास्टर, अपना मालिक खुद बनूंगा। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे मुसाफिर को देखा है जो किसी दूर देश के एक अनजान और विशाल मेले में आ गया हो? जब वह उस मेले में कदम रखता है तो वहाँ की रंग बिरंगी रोशनियाँ, दुकानों का शोर, नाच गाने और तमाशे उसे इतने लुभावने लगते हैं कि वह पूरी तरह उनमें खो जाता है। वह चीज़ें खरीदने लगता है, तमाशों की भीड़ में धक्के खाता है, लेकिन जब रात गहरी होती हैं, मेला उजड़ने लगता है और सब दुकानें बंद हो जाती हैं, तब अचानक उस मुसाफिर को याद आता है कि अरे, मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं था, मेरा असली वतन तो कोई और था। पर अफसोस कि तब तक वह उस भीड़ भाड़ और गलियों के जाल में अपने घर का रास्ता पूरी तरह भूल चुका होता है। हमारी जीवात्मा की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हम उस परमानंद के अमर देश से इस संसार के मेले में आए थे, लेकिन यहाँ की माया, रिश्तों और चिंताओं में ऐसे उलझे

कौन देश कहाँ आईया, कहूँ क्यों जाना जाई, उहू मार्ग पावे नहीं, भूली पड़े इस माही। कौन देश कहाँ आईया।

श्रोताओं, कबीर साहब मनुष्य की आत्मिक पहचान पर एक परम दार्शनिक प्रश्न उठाते हुए कहते हैं, कौन देश कहाँ आया। हे जीव, तू जरा विचार कर कि तू कौन देश यानी किस परम पावन अविनाशी अमर लोक का रहने वाला था और कहाँ आया यानी इस काल और नश्वरता के अंधकार में मृत्युलोक में कहाँ आकर गिर पड़ा। कहूँ क्यों जाना जाए और उस अगम अनाम देश के स्वरूप को यह सांसारिक चर्म चक्षु और सीमित बुद्धि भला क्यों जाना जाए यानी कैसे जान और समझ सकती हैं। इस जीव की सबसे बड़ी विडंबना को अगली पंक्ति में उजागर करते हुए कहते हैं, वह मार्ग पावे नहीं अपने उस शाश्वत निज धाम उस आत्मस्वरूप तक वापस लौटने का। उह मार्ग यानी वह गुप्त आंतरिक राजमार्ग इस जीव को सूझता ही नहीं, मिलता ही नहीं। भूली पड़े हम माही क्योंकि यह सांसारिक विषय वासनाओं देह अहंकार और झूठे प्रपंचों के दलदल में ऐसा भूली पड़े यानी इस कदर खो चुका है कि इसने इसी किराए के सराय को अपना असली घर मान लिया है। यह दोहा सूफी मत के वतन ए असली और वेदांत के अध्यास तथा अविद्या का महाविश्लेषण है। उपनिषदों में भी जीव को अमृतस्य पुत्रा अर्थात अमृत की संतान कहा गया है। आत्मा मूलतः शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वरूप है लेकिन माया के प्रभाव से वह खुद को यह हाड़ मांस का शरीर और इस संसार का कैदी मान बैठती हैं। यह मारक प्रतीक है उस अंतर्मुखी सुषुम्ना और अनहद नाद के मार्ग का जो सदगुरु के ज्ञान से ही प्रकट होता है। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि जब तक साधक अपनी इस मूल पहचान को नहीं खोजता तब तक वह चाहे जितनी सांसारिक महल बना लें वह एक भटका हुआ परदेसी ही बना रहेगा। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर खुद से यह बुनियादी सवाल पूछिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। क्या हमारा अस्तित्व केवल इन चंद सांसारिक उपाधियों में पैसों मकानों और रिश्तों तक ही सीमित हैं? हम इस संसार की पराई जमीन को सजाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमने अपने शाश्वत घर की कोई सुध ही नहीं ली। आज कोशिश कीजिए अपने उस असली वतन की खोज शुरू करने की। इस संसार के झूठे आकर्षणों में खोने के बजाय अपनी चेतना को अंतर्मुखी बनाइए। सदगुरु के वचनों का दीपक हाथ में लीजिए और उस राम नाम की पगडंडी पर चलिए जो सीधे आपको आपके मूल आत्मस्वरूप से मिला देती हैं। जब आपको अपने असली घर का मार्ग मिल जाएगा तो इस भवसागर का सारा भटकाव एक ही पल में समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम।

नमस्कार, ओम शांती। वर्षात सकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता। कितनी बढ़िया लाइन है, उसके ऊपर हमने चिंतन किया। वर्षत सकल मंगली, मांगल्य का वर्षा वो भी सदा, हमेशा के लिए, कभी कभी नहीं है। ऐसी स्थिति जब आएगी तब स्वर्ग की नींव तैयार हो जाएगी। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, माउली कह रही है। ये स्वर्ग की नींव क्यों तैयार हो जाएगी? क्योंकि हम हमेशा जब भी इसके ऊपर चिंतन करते हैं तब उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि मावली का जो विजन है वो सुखमय है। ये दुनिया जो है, संसार जो है, वो सुखमय हो, ऐसा उनका विजन है, ऐसी उनकी इच्छा है, ऐसी उनकी प्रार्थना है, ऐसा उनकी विश्वास है, ऐसा उनका विश्वास है। और इसलिए वो विश्वात्मक देव के पास प्रार्थना करते हैं, डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सब सुखमय हो। और सुखमय होने के लिए क्या लगेगा या कैसा ये सुखमय होगा, उसकी फर्स्ट स्टेप है वर्षत सुकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता। अभी देखिए, हमें अगर कोई एक भी आदमी मिलता है तो हम बोलते हैं भगवान ने आपको भेजा है। मराठी में कहते हैं देवासारखा भेटलास, देवा सारखा, भगवान जैसे आप मिले हैं, भगवान नहीं मिले। क्योंकि भगवान ऐसी चीज है कि हमने कभी उनको देखा ही नहीं, या समझा ही नहीं, या जाना ही नहीं। या अगर कोई कहता है, भगवान को मिलने के लिए इच्छा तो सब रखते हैं, लेकिन सचमुच मिल गया तो मन में कहीं ना कहीं हमने फिक्स करके रखा है कि भगवान तो मिलने वाला नहीं है, वो ऐसे ही कहते हैं। और इसलिए अगर सचमुच भगवान मिल भी गया तो कई लोग या हम उसके ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे। तो भगवान मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी पहचान क्या है? भगवान को मिलाने के लिए ऐसे लोग आपके पास आएंगे, वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी। अभी ऐसे बहुत जो लोग हैं वो टू बी और नॉट टू बी में फंसे हैं, उनके लिए माउली कहती है एक दिन ऐसे आएगा, वर्षत सकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी। ईश्वर निष्ठ लोग जो है, जो ईश्वर से आपकी मुलाकात करवा देंगे या ईश्वर से मिलवा देंगे, ऐसे लोग है, उनकी मांदियाळी लग जाएगी। मांदियाळी मीन्स एक दो तीन नहीं, समुदाय। इतने लोग होंगे कि वो आपके पास आएंगे और हमेशा मांगल्य का वर्षाव करेंगे आपके ऊपर। तो क्या होगा? खुशी होगी ना? तो एक वो जो लाइन पूरी होती है, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतो भूता। अभी उसके आगे की लाइन जो है वो बहुत कैची है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये लाइन पहले मैं बोलता हूं। चलांग कल्पतरुन से आरव, चेतना चिंतामणिन से गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषान से। व्हाट्सएप पे हमारा एक ग्रुप है और मेरे एक मित्र श्री शांताराम चास्कर, उन्होंने ये ग्रुप में डिस्कशन करते करते ये लाइन पूछी थी। उसका अर्थ कुछ उन्हें डिस्क्रिप्शन वाइज चाहिए था। इसके ऊपर मैंने लिखना थोड़ा मुश्किल लगा तो ये कल्पना आ गई कि ये बोलेंगे, बोल के अगर ये उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे या शेयर करेंगे अपने भावना, अपने विचार, तो ज्यादा अच्छा लगेगा पूरे ग्रुप को, जो मेरे मित्र हैं उनको अच्छा लगा। ये कल्पना अच्छी लगी और ऐसा ये पसायदान जो है, जो आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं, 12 एपिसोड 13 एपिसोड हो गए हैं, ये 14वां है।
तो उसकी शुरुआत जो है हर किसी कर्म की, हर किसी कार्य की शुरुआत होने के लिए कुछ ना कुछ निमित्त हो जाता है, लग जाता है। ऐसे ही हमारे मित्र जो है शांताराम चास्कर, वो उसके लिए निमित्त हो गए हैं, और इसलिए ये पंच लाइन है। चलांग कल्प तरुण से आरव, चेतना चिंतामणिन से गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषान से। देखिए चलांग, चला कल्प तरुण से आरव, कल्पतरु, ये कल्पतरु जो है ये भी कवि कल्पना है। ऐसी बहुत सारी कवि कल्पना हम सोचते हैं, हम ये भी कहते हैं कि स्वर्ग भी कवि कल्पना है, स्वर्ग वैसे कोई होता नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न कहते हैं, या स्वर्ग था, स्वर्ग है या ऐसे ही कवि कल्पना है, क्योंकि जो हम कहते हैं स्वर्ग में गए, कोई भी गुजर गया तो कभी आपने सुना है कि वो नरक में गया बोलते हैं? नहीं, वो कहते हैं स्वर्ग में गया। एटलीस्ट हमारी भावना है, हमारी इच्छा है स्वर्ग में जाने की, तो स्वर्ग कहीं ना कहीं होगा। और ऊपर हम देखते हैं, ऊपर स्वर्ग है, ऊपर स्वर्ग है, यही गड़बड़ है। ऊपर है लेकिन चक्र, अगर ये साइकिल है ना, ये सब साइकिल साइक्लिक है, सृष्टि चक्र बोलते हैं। दिनमपि रजनी सायं प्रातः पुनरवसंतो पुनराजया, या पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मोरारे। ये भी चक्र है, जैसे दिन और रात चक्र है, ये ऋतुओं का चक्र है, वैसे ये युगों का भी चक्र है, सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग और कलियुग। अभी चक्र में, या हम मेरी गो राउंड में बैठते हैं, जब मेरा झोला टॉप में रहता है तब दूसरे का झोला बॉटम में रहता है, और जब मैं बॉटम में रहता हूं तो दूसरे का टॉप में रह जाता है। तो अगर स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है और ये चक्र है, तो सतयुग जब ये मैं कलयुग में हूं, तब सतयुग कहां रहेगा? वर्चुअली ऊपर रहेगा। और इसलिए हम सोचते हैं कि स्वर्ग ऊपर है, स्वर्ग ऊपर नहीं है। जैसे सूरज जो है या चांद जो है, बचपन में हम देखते थे कि जैसे जैसे मैं ग्राउंड पे चलता था तो चांद जो है वो मेरे सर पे रहता था, और मुझे लगता था कि मेरे साथ साथ वो चल रहा है। वो चल रहा है, चांद मेरे साथ नहीं चल रहा है, मैं चांद को देख सकता हूं। लेकिन यहां क्या है, कलयुग जो है, कलयुग में बैठा हूं तो कलयुग के साथ स्वर्ग नहीं चल रहा है, स्वर्ग अलग है, क्योंकि वो युग अलग है। और इसलिए हमें लगता है कि यह स्वर्ग ऊपर है। अभी धरती पे स्वर्ग उतर आएगा, और इसलिए ऐसे बहुत सारे जो पेड़ है, प्राजक्त है, पारिजात, ये भी कहते हैं स्वर्ग से आया, अमृत स्वर्ग से आया, गंगा स्वर्ग से आई, और ये जो कल्प वृक्ष है ये भी हम कहते हैं स्वर्ग से आया। ये कल्प वृक्ष क्या कहता है या क्या करता है? कल्प वृक्ष ऐसा है कि उसके नीचे आप बैठो और कोई भी कल्पना करो तो ये कल्पना पूरी हो जाती है। तो ऐसा कल्प वृक्ष, ये कवि कल्पना है या नहीं है उसके ऊपर हम भले बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये ऐसा कल्प वृक्ष अगर हमें मिलेगा तो क्या बाहर आएंगे? आप कल्पना करो, पूरी हो गई। लेकिन उसके लिए भी प्री कंडीशन है, जो हमने पिछले लाइन में देखी थी, विश्व स्वधर में सूर्य पाहो जो जे वांछील तोते लाहो प्राणी जात। जब आप विश्व स्वधर में सूर्य को देखते हैं, विश्वारा विश्व जब अपने स्वधर में स्थित होके सूरज को या भगवान को देखते हैं, तो बुरी कल्पना, बुरा विचार, बुरी इच्छा मन में पैदा ही नहीं हो सकती। इसलिए जो जे वांछील तोते लाहो प्राणी जात,
वैसे कल्प वृक्ष के नीचे अगर हम बैठेंगे, भगवान को देखते हुए बैठेंगे, विश्वात्मक देव को याद करते हुए बैठेंगे, तो मन में बुरे विचार आएंगे ही नहीं। सर्वे सुखन संतु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यंतु, मां कश्चित दुख मापनीय। यही विचार आएगा कि सबका कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, बाकी सबका भी कल्याण हो। ये विचार आके, ये विचार लेके, ये संकल्प लेके अगर मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठूंगा, ये कल्प वृक्ष कल्पना का वृक्ष ऐसा नहीं है। कल्प वृक्ष मीन सारे कल्प, जो चार युगों का जो एक कल्प माना जाता है, ये कल्प जिसमें समाया हुआ है ऐसा कल्प वृक्ष है। और माउली चलां कल्प तरुण से आरव, चेतना चिंता मणिन से गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषान से। तो माउली जो वर्णन करती है, देखिए कवि जो होता है ना, वो कवि जो वर्णन करता है तो कहीं कसर बाकी नहीं छोड़ता, पूरा का पूरा भरपूर कर देते हैं। और इसलिए माउली कहते हैं चलां कल्प तरुण से आरव, कल्प तरु एक मिल गया तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बन गई, लेकिन माउली कहती है एक कल्प तरु से क्या होगा, यहां तो कल्प तरुण के बगीचे आ जाएंगे। आरव मीन्स बगीचा, गार्डन, गार्डन ऑफ कल्पतरु। और इतने कल्पतरु आपके सामने आ जाएंगे, वो कैसे हैं? चलां कल्पतरु उनसे आरव, उसका मतलब क्या है? चेतना चिंता मणिन से गाव, इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम शांति।

नमस्कार, ओम शांति। संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज माउली ज्ञानोबा राय, कितने नाम है और सब नाम प्यार से लिए जाते हैं। उनको माउली भी कहा जाता है, योगीराज कहा जाता है। और ऐसे योगीराज भगवान के पास कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं, जिसे हम पसायदान कहते हैं। और उस पसायदान के शब्दों के ऊपर हमारी चर्चा चिंतन शुरू है। क्यों करना है ये चिंतन और चर्चा? उससे रस मिलना है, फल है, बहुत सुंदर फल है, मधुर फल है। और हम सिर्फ देखते रहेंगे तो उसका आनंद नहीं ले सकेंगे। फल दूर से बहुत अच्छा दिखता है, रंग अच्छा है, रूप अच्छा है, लेकिन उसका रस जब तक नहीं लेंगे तब तक उसका आनंद नहीं मिलेगा। ऐसे ही ये माउली का जो पसायदान है उसका हम रस लेने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ रस लेना नहीं है, सबको बांटना है, क्योंकि ये रस मधुर है, ये रस शक्तिशाली है। और ये शक्तिशाली रस जब हम लेंगे तब हमारे मन को भी शक्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा। आम का सीजन रहता है तब घर में मेहमान आते हैं, आम की खुशबू तो दूर तक चली जाती है। और जब मेहमान को हम आम काट के देते हैं तो कितनी खुशी होती है, देने वाले को भी खुशी और लेने वाले को भी खुशी। तो ये आम जैसा ही मधुर फल है पसायदान, और उसका हम आनंद ले रहे, रसास्वाद ले रहे हैं। और इसमें माउली ने जो वर्णन किया है, इसके ऊपर हमारी पिछले एपिसोड में चर्चा थी। चला अंकल्प तरुण से आरव, चेतना चिंतामणिन से गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषान से। कल्पतरु के ऊपर हमारा चिंतन शुरू था, पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि ये कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष क्या है इसके ऊपर हमने कुछ चर्चा की। कल्प वृक्ष जो है वो पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि कल्पना में वृक्ष ऐसे नहीं है, सारे कल्प में वृक्ष है और सर्व कल्पना पूर्ण करने वाला भी वृक्ष है। क्योंकि ये वृक्ष को भी बहुत सारे नाम हैं, छोटा रहता है तब पौधा कहते हैं, रोप्ट, मराठी में रोप्ट कहते हैं पौधा। फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसे झाड़ कहते हैं, और फिर झाड़ जब हो जाता है तब फल देना शुरुआत हो जाती है। लेकिन जो रसदार फल आते हैं, मैच्योरिटी बोलते ना हम, मैच्योर्ड, वो है अनुभव, वो है वृक्ष। और ये वृक्ष सिर्फ फल नहीं देता, छाया भी देता है और सबको प्राण वायु भी देता है। जो कोई उनके संपर्क में आता है उसे कुछ ना कुछ देता ही है। और देखिए, ये वृक्ष जो है, एक बहुत अच्छा सुना था, आपने भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, कि छोटा बच्चा रहता है और वृक्ष को पत्थर मारता है, उसके बदले में वृक्ष क्या देता है, उसको फल देता है। पत्थर मारने के बाद रिटर्न में फल देता है, हम क्या करते हैं? और इसलिए वृक्षवल्ली अम्हा सोयरे वनचरी, संतों ने वृक्ष की महिमा की, पर्यावरण के लिए वृक्ष रहता है। और ये वृक्ष जो है, मानसिक पर्यावरण भी हमारा बहुत है, प्रदूषण, मानसिक प्रदूषण भी बहुत है। जैसे वृक्ष प्रदूषण कम करते हैं, वातावरण में जो प्रदूषण है वो कम करते हैं, वैसे हमारा मानसिक प्रदूषण भी बहुत हो गया है। नकारात्मक विचारों का प्रदूषण बहुत हो गया है। और ये विचारों का प्रदूषण अगर दूर करना है
तो क्या करना पड़ेगा? चला कल्पतरुन से आरव चेतना चिंता मणिन से गाव। ये कल्पतरु जो है, कल्प वृक्ष जो है, वो सिर्फ अगर हम उसके तल में, उसके पास बैठेंगे तो भी बहुत प्राणवायु मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, सकारात्मक चिंतन होगा। ये कैसे वृक्ष है ये? और सबसे अच्छा जो लगा मुझे कल्प वृक्ष का जो नाम शब्द यूज किया है, और एक कल्प वृक्ष है, और एक वृक्ष है गीता में उसका उल्लेख है, ऊर्ध्व मूलाथ शाखम अश्वत्थम प्राहुर्रफेयम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित। ये जो वृक्ष है वो उल्टा है, ऊर्ध्व मूल उसका मूल जो है वो ऊपर है और शाखाएं जो है वो नीचे है। ये भी वृक्ष है और ये वृक्ष जो है और उसका मूल है मूलाधार। जब तक मूल तक नहीं जाते हैं तब तक उसका आधार नहीं मिल सकता है, और अगर मूल जड़ मजबूत हो तो वृक्ष भी मजबूत हो जाता है। अगर जड़ में कुछ क्षति उत्पन्न होती है तो वृक्ष ठीक नहीं रहता। तो ऐसे हमारा वृक्ष जो है कल्प वृक्ष, ये कल्प वृक्ष है। और ये भी कैसा है, एक अभी देखिए, अगर वृक्ष है, वृक्ष के फल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे? वृक्ष के पास जाना पड़ेगा और फल लेने पड़ेंगे। मेरे घर के आंगन में वृक्ष है और मैं कहीं बाहर गया हूं और मुझे फल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मुझे घर आना पड़ेगा, आंगन में जाके फल से, वृक्ष से फल लेने पड़ेंगे। लेकिन यहां तो माउली ने कहा है ये वृक्ष जो है, कल्प वृक्ष जो है, वो चलांग कल्प तरुण से आरव, चलते है। मराठी में कहते चालते बोलते, चलते फिरते जो है, मीन्स खाली किताब में जो वर्णन है ये नहीं है, वो प्रत्यक्ष है। और ये कल्प वृक्ष जो है वो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो कल्प वृक्ष आपके पास आएगा और आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। लेकिन ये मनोकामना कैसी होगी उसका फिर देखिए, हर बात का कनेक्शन, हर शब्दों का कनेक्शन एक दूसरे से है। विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो से जाओ कनेक्शन है, जो जेवांछील तो तेला हो। आपकी कल्पना, जैसे आप कल्प वृक्ष के संपर्क में आएंगे तो आपकी इच्छा भी पवित्र होगी, आपको अच्छा बनाने के लिए इच्छा होगी और सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए कहते हैं अच्छा अच्छा कहो तो अच्छा हो जाता है। और ये अच्छा अच्छा कहो कहने के लिए कल्प वृक्ष, चलांग कल्प तरुण, चलते फिरते वृक्ष जो है, कल्पनी के कल्प वृक्ष जो है, सिर्फ कल्पना के नहीं है, प्रत्यक्ष है, क्योंकि चलते फिरते है, वो आएंगे। कब आएंगे? वो दो तरीके हैं, जब कल्प वृक्ष ऐसे, और वो भी एक नहीं है। चलांग कल्प तरुण से आरव, आरव बगीचा, और इतना बगीचा, बगीचा देखिए, बगीचे में तीन झाड़ भी हो जाते हैं और बहुत सारे पेड़ हो जाते हैं, बहुत सारे वृक्ष हो जाते हैं। और वृंदावन गार्डन जैसे कहते हैं ना हम बेंगलोर में, जो मैसूर में वृंदावन गार्डन है, कितनी बड़ी गार्डन है। ऐसे अगर आरव बगीचा इतने वृक्ष होंगे तो एक दूसरे को देंगे, सिर्फ लेने की भाव नहीं है, देने का भी भाव है। इसलिए अगर दो कल्प वृक्ष एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या होगा? और ऐसे कल्प वृक्ष का बगीचा अगर चलते फिरते हमारे पास आएगा तो क्या होगा? निगेटिविटी रहेगी? बिल्कुल ही नहीं रहेगी। और ये कल्प वृक्ष, चलांग कल्प तरुण से आरव, ये बगीचा जो है, वो बगीचा जब होगा तब सतयुग आएगा। और सतयुग जो है, जो स्वर्ग की संकल्पना है, वहां भी हर मनुष्य जो होगा वो कल्पतरु जैसे होगा, कल्प वृक्ष जैसे होगा। और ये उनका एक नहीं,
हजारों होंगे और इसलिए चलांग कल्पतरु उनसे आरव। फिर आगे चेतना चिंतामणि से गाव, चेतन क्या है, चिंतामणि क्या है, और बोलती जे आर्णव पीयूषान से, वो पीयूष क्या है, आर्णव क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे 16वें एपिसोड में। अभी ये 15वां एपिसोड पूरा हो गया है, अभी आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे 16वें एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। हमारे चेहरे की मुस्कुराहट बताती है कि रास्ता हमें मिल गया है, लेकिन मुश्किल ये है कि उस रास्ते पर चलना कैसे है। और यही जानने के लिए कि किस तरह से जीवन के इस रास्ते को बेहतर बनाकर हैप्पीनेस की जो हम बात करते हैं, खुशी की जो बात करते हैं, उसे इस पूरी जर्नी में तराशना है। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ फिर हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत। ओम शांति। शिवानी, हमने बात ये की थी कि डेस्टिनेशन जो है वो खुशी नहीं हो सकती, हमारा जो पूरा रास्ता है, पूरा प्रोसेस है, जो जर्नी है, दैट शुड बी हैप्पीनेस। और हम जो खास मुद्दों पर जिन पर बात करते आ रहे हैं वो है ट्रस्ट। आज हमने पहले से ही सोचा हुआ था कि हम, क्योंकि जो बात हमने की थी वो थोड़ी सी आधी ये थी कि जब रिश्तों में विश्वास नहीं रहता तो किस तरह से उन्हें हैंडल किया जाए।
1: विश्वास हमारा खुशी का लेकिन एक बहुत बड़ा आधार है। यू नो, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस, ट्रस्ट इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। इट इज, बिकॉज जितना आई विल ट्रस्ट, आई विल रिमेन इजी,
0: कंफर्टेबल,
1: बहुत कंफर्टेबल, और जीवन एकदम सरल बन जाती है एकदम, क्योंकि आपके पास वेस्ट थॉट की मार्जिन नहीं है ना। सी, थॉट्स जो सारे इतनी सारी चल रहे हैं, वेस्ट थॉट्स बहुत चलती हैं, कहीं ये ऐसा ना कर दे, कहीं किया कुछ भी नहीं होगा सामने वाले ने, कहीं ये ऐसा ना कर दे, ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं सच बोल रहे हैं, पता नहीं इसमें इनका फायदा तो नहीं है, मतलब इट्स अ चेन,
0: कहां तक पहुंच जाता है,
1: बहुत दूर। एंड इतना सब टाइम में हम भारी हो गए। तो खुशी, व्हाट वी टॉक्ड अबाउट दैट डे, कि खुशी ऑलरेडी है, चाहिए नहीं, वो ऑलरेडी है, ये सारी चेन ऑफ थॉट्स क्रिएट की वो लीक हो गई। तो ये सारी जो छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस की हैं, दीज आर वेज इन विच वी कैन सस्टेन दैट हैपनेस। उस चाहिए नहीं लेकिन वो है, उसको कायम रखने की विधि क्या है। तो विश्वास रखना लोगों पर, अपने आप पर, परमात्मा पर, यू नो, लाइफ कैन बिकम सो सिंपल। थॉट के ये कोई मुझे चीट नहीं कर सकता, क्यों मुझे कोई चीट करना चाहिए, व्हाट इज अ लॉजिकल रीजन, कोई रीजन ही नहीं है। तो जीवन बहुत सरल बन जाती है उससे।
0: जीवन की सरलता की बात की तो सचमुच गुत्थियां उलझाने में जितना वक्त लग जाता है सुलझाने में, तो अगर वो सरल है, सिंपल है, सीधी राह है, तो उस पर चलना आसान हो जाता है। लेकिन हम जो एक पूरा प्रोसेस में अगर हम देखें तो हम ये देखते आ रहे हैं कि एक थॉट जो है वो जनरेट करता है डेस्टिनी को, और नेगेटिव बिलीव्स, यू नो, तो हमने ट्रस्ट से जुड़ी हुई जो बिलीव्स की बात की थी कि विश्वास तो किया ही नहीं जा सकता।
1: आज दुनिया विश्वास के लायक नहीं है, यू नो, दिस इज अ बिलीफ। लोग धोखा देते ही हैं, लोग हैं ही वैसे, तो ये बिलीफ है। तो
0: और अगर आप विश्वास करो तो आंख बंद करके विश्वास ना करो, एक आंख खोल के विश्वास करो।
1: वो फिर वही है कि गुस्सा मुझे नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा गुस्सा चाहिए, तो थोड़ा और ज्यादा की कोई मार्जिन ही नहीं है। अगर वो है तो है, तो अगर हम विश्वास नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। देयर इज नो सच थिंग एज, यू नो, एक आंख से डाउट करो और एक आंख से ट्रस्ट करो।
0: लास्ट टाइम, यू नो, इफ यू रिमेम्बर, वी हैड टेकन एन इशू वेयर एक जो एमएनसी में काम कर रहे थे और उनको अपने बॉस पे विश्वास नहीं था, उनको लगा था कि उनका विश्वास टूटा है। ऐसे अगर हम आज बात करें तो पति पत्नी के रिश्ते में, अभी तक ये कहा जाता था कि मेरी पत्नी बहुत डाउट करती है, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं होता मुझ पे कि, और पत्नियां मतलब एक वो मजाक का विषय, हमेशा एक जोक होता था कि मतलब मुझ पे विश्वास नहीं करती है, सारी कितनी कविताएं भी बनाई गई हैं इसके ऊपर। लेकिन आज सचमुच में पति हो या पत्नी हो फर्क नहीं रह गया है, विश्वास का जो एक इतना प्यारा मधुर रिश्ता था वो कहीं एक पूरा का पूरा डोर जो है ना वो टूट गई है। ये एक बात, इस पे मैं जानना चाहूंगी कि क्या हुआ है। दूसरा एक बात ये भी कही जाती है कि रहीमन धागा प्रेम का, कि अगर एक बार वो गांठ पड़ गई तो वो नहीं खुल सकती। ये
1: भी एक बिलीफ है।
0: हाँ
1: ये भी एक बिलीफ है कि एक बार अगर वो गांठ बंद गई तो फिर नहीं खुल सकती।
0: नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है।
1: और हम उस प्रोसेस में क्या कर देते हैं कि एक गांठ तो बंद गई, हम और इतनी सारी गांठें बांध देते हैं उसके अंदर। कितना सरल होता अगर हम उस एक गांठ को खोल देते, लेकिन हमने सोचा एक बार विश्वास टूटा, अब नहीं फिर हो सकता। Why?
0: क्यों नहीं हो सकता?
1: Why? Talk it out, sort it out, and it's back to normal. आखिर वो सामने वाला वही तो है इंसान जिसपे मैंने कितना विश्वास किया था। हो सकता है परिस्थिति कुछ और बनी, हो सकता है कुछ उसके मन में आया, कोई भी बात हो, लेकिन एक घटना से या एक परिस्थिति से हमारा वो विश्वास इतना कमजोर तो नहीं होना चाहिए ना कि वो बिल्कुल इतना इजीली टूट जाए.
0: और सबसे बड़ी बात है, हो सकता है मेरी तरफ से कुछ ऐसा रिस्पांस रहा हो.
1: राइट.
0: जब तक मैं बात नहीं करूंगा या करूंगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि हो सकता है मेरा कुछ ऐसा रिस्पांस.
1: एब्सोल्युटली. जिसने वो, और कभी कभी हो सकता है कि एक्चुअली कुछ भी नहीं है. ये मेरे अपने मन की परसेप्शन है. हम जैसा सोचते हैं कि दूसरा कर रहा होगा, हम बस उसको उसी दृष्टिकोण से देखते हैं. आप देखिए, दुनिया में कहते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड ट्रस्ट एंड वेरी इजी टू ब्रेक इट. It takes a long time to trust. It takes a second to break it. मतलब हम बहुत समय एक व्यक्ति को परखने के बाद उस पर विश्वास करते हैं.
0: I think we should reverse it.
1: Beautiful. That's exactly what it is. Yeah. It should be actually the opposite. It's not that it should be, but it's beautiful if it is.
0: Yeah.
1: कि it should be easy to trust and very difficult to break it.
0: Yes. You know, like
1: आप easily trust कीजिए, करते जाइए, आपको in return trust मिलता ही जाएगा. It is a law of karma. ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो energy आप देते हैं वही energy आपको return में मिलती है. ये हो सकता है कि I give you something, मेरे को आपसे कुछ different मिले, लेकिन that's because then I have given that to someone else. You know, that's why मैंने पहले भी आपसे जो share किया कि सभी के साथ वो एक ही लेवल ऑफ वो रखना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि 10 लोगों को बहुत मिसट्रस्ट करें, एक को जाके बहुत ट्रस्ट कर दें और फिर एक्सपेक्ट करें कि वो इन रिटर्न बहुत ट्रस्ट करें. दैट वोंट वर्क. मेरी नेचर वो बन जानी चाहिए.
0: You know, the other human being, जिस भी being से मैं मिल रही हूँ, it's again a beautiful human being because I'm a beautiful human being.
1: Absolutely. अगर हम वही सोच लेकर चलेंगे that everybody is beautiful, you know, हर एक इंसान में कितनी अच्छाइयाँ भरी हुई हैं, उनको अच्छाइयों को देखते जाएं, उन पर विश्वास करते जाएं, तो ऑटोमेटिकली जिनसे भी हम मिलेंगे उनको एक अच्छी वाइब्रेशन हमारे साथ आएगी. और जब वो अच्छी वाइब्रेशन किसी को मिलती है तो अगर उसकी नेचर है भी धोखा देने की, वो आपको धोखा नहीं दे पाएगा.
0: That's a great trust actually. You also have, you know, each individual.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: यहाँ एक ईमेल मैं लेना चाहती हूँ. हैदराबाद से हमें ये ईमेल आया है और राजीव मल्होत्रा ने मेल भेजा है. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मेल. ही सेज कि मेरे वाइफ और मेरी मैरिज को 5 years हो चुके हैं. वी गॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप. वी बीन मैरिड फॉर 5 years और उससे पहले का हमारा अफेयर भी था 3-4 साल का. मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो ऐसे ही वाइफ से शादी करना चाहता था, ऐसी लड़की से जो कि प्रोग्रेसिव है, जो अपनी नौकरी करती रहे और आगे ग्रो करे. और मैं ऐसा ही बना भी रहा, बनने की कोशिश भी करता रहा. लेकिन अब प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं आज तक अपनी वाइफ को भी नहीं कह पाया कि मैं अंदर से उसको लेके इनसिक्योर रहता हूँ. एंड कहीं ना कहीं कभी कभी मुझे लगता है कि वो लेट क्यों आती है. वो यू नो, जहाँ पे होना चाहिए ऑफिस की पार्टी में भी क्यों चली जाती है. बट आई कांट टेल इट टू हर बिकॉज आई फील कि वो कहेगी कि आप बड़े ट्रेडिशनल हैं, कन्वेंशनल हैं, यू आर नॉट लाइक दिस. एंड उसमें क्या होता है, फिर मैं कोल्ड हो जाता हूँ. आई एम रियलाइजिंग माई ओन प्रॉब्लम बिकॉज देर इज नथिंग एल्स. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं ट्रस्ट उसको नहीं कर पा रहा हूँ बहुत ज्यादा. तो क्या मैं गलत हूँ? क्या मुझे उसको कह देना चाहिए? क्योंकि अगर मैं कहूंगा तो मुझे ये लगता है कि वो समझेगी नहीं, और दूसरी तरफ ये हमारे रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं कोल्ड हो गया हूँ.
1: तो नेचुरल रीजन नहीं, सामने वाले को तुरंत पता चल जाएगा.
0: लेकिन ये दिस इज अ प्रॉब्लम आई थिंक विद टुडेज मेट्रोसेक्सुअल मेन. यू नो, कि वो कहीं ना कहीं ग्रो तो करना चाह रहे हैं. जो आज औरत की आजादी है, दिस इज व्हाट आई फील अबाउट दैट शी हैज बिकम इंडिपेंडेंट. यू नो, वो अपनी इंडिपेंडेंट, दे आर हैप्पी विद इट. उसके साथ कंधा कंधा देने की कोशिश कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन अपनी इनसिक्योरिटी वो क्यों नहीं शेयर कर पाते? दिस इज व्हाट आई फील.
1: ट्रू, बट दिस इज अ टिपिकल केस के जहां एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है. यू नो, कोई तो केस है कि जहां आपको एक्चुअली पता चल जाए कि योर वाइफ और योर हस्बैंड इज डूइंग समथिंग which is not agreeable with you, and तब आप mistrust करें. अब ये तो actually सिर्फ अपना ही वहम है, कुछ भी नहीं है.
0: नहीं, लेकिन क्योंकि ये बात नहीं करते हैं, that's what he says कि मैं इतना major depression में चला जाता हूँ, किसी से बात नहीं करता, और क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसे बात करूँ.
1: True.
0: लेकिन मैं ये जानते हुए भी कि मुझे अब विश्वास नहीं करना चाहिए.
1: लेकिन इस particular केस में इसका solution सिर्फ इनके पास है. इनकी वाइफ इनकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक्चुअली उसने कुछ किया नहीं है. यू नो, इट्स माई ओन सेल्फ क्रिएटेड assumption के हो सकता है, नहीं भी हो सकता, पता नहीं क्या है. तो अगर हम सामने वाले से जाकर बात भी कर ले और वो व्यक्ति कह भी दे कि जी ऐसा तो बिल्कुल कुछ नहीं है, it won't make too much of a difference.
0: Actually deep within he knows कि ऐसा कुछ
1: क्योंकि उसे ये भी पता है कि actually कुछ नहीं है. लेकिन क्योंकि एक element of doubt ये जो अंदर बैठ गया है, इसका solution किसी और के पास नहीं है. उनकी वाइफ भी अगर वो बात भी करें तो इट विल अननेसेसरली आई थिंक ट्रिगर ऑफ अनदर एपिसोड, क्योंकि बहुत ज्यादा इस केस में रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि वाइफ की अश्योरेंस उनके डाउट को नहीं खत्म कर सकती है, क्योंकि उसके पास कुछ प्रूफ करने के लिए है ही नहीं. यू नो शी नीड्स टू प्रूव इट नाउ. तो उनके पास प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं है. शी कैन ओनली से कि देयर इज नथिंग लाइक दैट. अब आपके पास चॉइस है, आप बिलीव करना चाहें तो आप कीजिए.
0: विद दिस केस तो आई थिंक अगर वो वाइफ नौकरी भी छोड़ देगी ना, तब भी इनको वापस नहीं आ पाएगा.
1: एंड एक्चुअली दैट्स नॉट द सॉल्यूशन. सी जो आपने कहा अर्लियर केस में भी, जब वाइफ्स घर पे होती थी और हस्बैंड बाहर जाते थे, तब वाइफ हस्बैंड पे डाउट करती थी, क्योंकि सारा दिन एक सोच है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, पता नहीं किन किन लोगों से मिलते हैं. नाउ वो चीज दोनों पर एप्लीकेबल है, क्योंकि दोनों वर्किंग है तो दोनों सोच रहे हैं पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं. इसका इलाज किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ मेरे अपने पास है. क्या रीजन है, मुझे अपने आप से पूछना पड़ेगा, व्हाट इज द रीजन दैट आई एम डाउटिंग द अदर पर्सन. क्यों? आई हैव टू गिव एन आंसर. एंड अगर आई एम नॉट एबल टू गिव माई सेल्फ एन आंसर, आप कितने भी दिन लगा दीजिए अपने साथ, बार बार अपने साथ पूछिए क्या रीजन है, सामने वाले ने ऐसी कौन सी चीज की है जिससे मेरे मन में ये क्वेश्चन उठा है. अगर आपको कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, आप उसको बात करके क्लैरिफाई कर लीजिए. लेकिन अगर आपको कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, देन पुट योरसेल्फ इन द अदर पर्सन्स प्लेस, कि अगर आपकी वाइफ आपके बारे में ऐसा सोच रही होती, आप कैसे कन्विंस करते?
0: कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते एक्चुअली.
1: और आपको अगर कन्विंस करना पड़ता, आप कैसे कन्विंस करते? सेम कन्विंशन अपने आप को दीजिए कि वाई, अगर मुझे कोई रीजन नहीं मिल रहा है, उसने कुछ भी ऐसी एक भी एक्शन नहीं की है जिससे कुछ लगे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, व्हाई एम आई डाउटिंग, दैट्स माय नेगेटिविटी. मेरे अंदर ट्रस्ट की कमी है, सामने वाले की कोई गलती नहीं है. और ज्यादातर ऐसा होता है कि इफ ही टेल्स हिज वाइफ नाउ, द वाइफ हैज नथिंग टू प्रूव
0: एंड शी विल नॉट लाइक इट. यू नो द दूरियां और बढ़ती जाएंगी.
1: एंड यू नो एट अ पॉइंट पर्सन कैन से कि आपकी चॉइस है, आप ट्रस्ट करना चाहें करें, नहीं करना चाहें नहीं करें, आई एम दिस वे, यू नो. एंड अगर जितनी देर आप नहीं करते, आप खुद ही अंदर घुटते रहते हैं. एक्सेप्ट कीजिए. और ये जो अभी डाउट का सीड जो ग्रो हो रहा है, इसको जितना जल्दी वो निकाल कर फिनिश कर देंगे, नहीं तो अगर कुछ नहीं भी था, अब हो जाएगा.
0: यस, यू नो. एंड इन फैक्ट ये जो आज के व्यक्ति,
1: क्योंकि एक नॉर्मल, जैसे उन्होंने कहा कि कोल्डनेस आ रही है, मतलब आप दो लोग दूर हो रहे हो. जहां आप दो जने दूर होने लगे, वो वाइफ और लोगों से फ्रेंडशिप छोड़ेगी. वो कहेगी जी घर जाके क्या करना है, वही बातें, वही झगड़ा, मेरे से तो बात भी नहीं करते हैं. मतलब नथिंग एनीथिंग रॉन्ग, बट शी विल स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम इन द ऑफिस, शी विल स्टार्ट सोशलाइजिंग मोर, बिकॉज़ देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू व्हेन शी गोज होम.
0: अच्छा, इन फैक्ट सेम थिंग कैन हैपन टू हिम, यू नो, बिकॉज़ ही इज गोइंग इनटू हिज ओन शेल.
1: राइट,
0: समबडी कम्स
1: राइट
0: इन हिज लाइफ हु इज एबल टू ब्रेक दैट,
1: बिल्कुल
0: ही विल गो विद हर.
1: क्योंकि वो इमोशनली बेंड हो जाएंगे ना दूसरे की तरफ. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो सीड को ग्रो होने नहीं दो, एंड रियलाइज कि मेरी लाइफ का ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है.
0: बट आई थिंक फर्स्ट स्टेप ही हैज टेकन इज, एटलीस्ट ही हैज एक्नॉलेज्ड एंड ही हैज रिटन.
1: एब्सोल्युटली. तो मोस्ट ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी डन.
0: यस, यू नो, बिकॉज़ इट मींस द मोमेंट यू एक्नॉलेज इट देयर इज समथिंग रॉन्ग, इट मींस यू गो ऑन द.
1: और उनको खुद ही रियलाइजेशन, ये जो मेल से लग रहा है कि उनको ऑलरेडी रियलाइजेशन है कि ये कुछ भी नहीं है, ये मेरा वहम है. तो अपने आप से बात करनी पड़ेगी कि ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें आधारित है, मेरा जीवन आधारित है. क्या मैं अपने वहम की वजह से इसको सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूँ, अपनी खुशी को पूरा त्याग करने के लिए रेडी हूँ? और फिर भी अगर चाहिए, फिर भी अगर कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा, देन गो एंड टॉक. Go and talk to her. And अगर आप एक पॉजिटिव इंटेंशन से, ना अगेन यू आर द इंटेंशन, यू नो, एक है कि मैं आपसे आकर बात करूं, ऐसा कुछ है? आप क्या करते हो? आप लेट क्यों आते हो? क्या जरूरत है पार्टी में जाने की? अटैकिंग मोड, यू नो, आप दूसरे को अटैक कर रहे हो, आप दूसरे को ये बताने की कोशिश कर रहे हो, आई एम चेकिंग यू, यू नो, यू आर रॉन्ग. द अदर पॉजिटिव इंटेंशन विल बी यू नो आई नो यू आर नाइस, आई नो देर इज नथिंग रॉन्ग, मुझे पता है कि आप बिल्कुल मतलब कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, बट पता नहीं मेरी अपनी क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही है, कैन यू हेल्प मी, द होल एटीट्यूड विल चेंज एंड द वाइफ विल वॉन्ट टू हेल्प द हस्बैंड.
0: No, in fact, and I think he's one of the nice men.
1: Yeah,
0: you know,
1: bilkul. Like, because but wo jo conversation karne se pehle intention ko theek kar le. If he's understood ki problem wahan nahi, problem yahan hai, he will have to accept that in front of the wife. Ki you're absolutely fine, but you know,
0: problem.
1: You're my partner, and mujhe ye thodi si takleef hai. And I think the only person who can help me right now is you. You're my friend. To bahar kisi aur friend se main jaake baat karu. इससे अच्छा बिफोर माई वाइफ योर माई फ्रेंड. यू नो एक फ्रेंडशिप का जो रिलेशनशिप अगर पार्टनर्स में ये डेवलप हो जाए, यू डोंट नीड अनदर फ्रेंड.
0: डेफिनेटली. एंड द वे नो
1: एंड एक्चुअली अ हस्बैंड वाइफ के बीच में आई डोंट थिंक दे नीड अनदर फ्रेंड.
0: यस डेफिनेटली.
1: योर पार्टनर शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड बिफोर being your life partner, he should be your best friend.
0: Yes, and in fact, ये कहा भी गया है पहले भी, you know, कि पति पत्नी के बीच में कोई नहीं आ सकता कभी भी, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं.
1: Absolutely, लेकिन जहाँ हम अपनी मन की बात या अपने घर की बात फिर अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें लगता है कि हमें किसी और से करनी पड़ेगी, एंड पता नहीं फिर दूसरा जना क्या राय दे उसके लिए, एंड maybe the whole thing will go absolutely
0: astray. यहाँ तो शिवानी एक हमारे पास ये केस था जहाँ कुछ भी नहीं
1: था, कुछ भी नहीं था
0: और उसके बावजूद मिस्ट्रस्ट थी जो इन्हीं को अपने एक शेल में लेकर जा रही है.
1: Right.
0: एक और हमें एक बच्चे ने कॉल किया. That's again amazing, you know, 11th class का वो स्टूडेंट है, I don't want to take his name, बहुत अच्छे स्कूल में दिल्ली में पढ़ रहा है. He says that when I was in 9th, मैं एक बुरी आदतों में पड़ गया था, मतलब क्योंकि मेरी मम्मी शी इज अ यू नो समवेयर अ वाइस प्रेसिडेंट है, विदेशों में बहुत जाती है, मेरे फादर इज आल्सो डूइंग वेरी वेल आईटी सेक्टर में है, आई हैव गॉट अ यंगर ब्रदर आल्सो, तो वी बोथ यूज्ड टू बी अलोन विद द मेट. तो मेरी कंपनी ऐसी हो गई थी कि मैंने यू नो ड्रिंक्स की तरफ चला गया था, स्मोकिंग की तरफ चला गया था, एंड आई वॉज इन टू यू नो लाइक ऑल दोज नेगेटिविटी. सो समवेयर मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई से खत्म हो गया था. तो जब तक मम्मी को एहसास हुआ इस बात का तब तक मैं काफी डीप में जा चुका था. Because I was not interacting with my mother, but still, she is my best friend. He was very
1: That's positive towards his
0: mother. You know, one thing I really liked about when he called up was that he was very positive towards his parents. नहीं तो usually क्या होता है कि बच्चे negative हो चुके होते हैं. But he said that I was in the negative thing, but I was hiding. Yeah, I was into girls and everything. So when my mother came to know about it, she talked to me and she tried. तब तक 10th के boards आ गए थे, ये हो गया था, और मेरे boards में exam result बहुत अच्छा नहीं आया. अब मेरी माँ के साथ बातचीत के बाद एंड यू नो मैंने खुद भी रियलाइज किया कि कहीं मेरा रिजल्ट ही इतना खराब आ गया तो मेरी जिंदगी आगे कहाँ जाएगी. एंड आई एम सपोज टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, दिस इज व्हाट ही सेड. अब मैं अच्छा बन गया हूँ लेकिन मेरी माँ को अभी भी विश्वास नहीं है. अब मेरे को मुझे फ्रस्ट्रेशन शुरू हुई है, कहते हैं मेरे को उस पूरे दौर में मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज माई मॉम हेल्प्ड मी आउट, लेकिन नाउ व्हेन आई एम बिकमिंग गुड, I am trying to do things right, you know, whatever is said right.
1: True.
0: I don't believe in it ki right hai ya wrong hai, lekin because my mom says ki aap raat ke 11 baje tak nahi bahar rahiye to main maan leta hu, chaliye drinks aur booze aur ye sab kuch bhi nahi kar raha hu, apne doston ko bhi badla hai maine, but my mother doesn't you know believe in me. अब उस ट्रस्ट को मैं कैसे पा सकता हूँ, और मैं फ्रस्ट्रेट होने लग गया हूँ. और फिर मुझे लगता है कि फिर अगर यही है तो फिर मैं वही चीज़ें क्यों ना करूँ. दिस इज अ मेजर, जब तक वो प्रॉब्लम में था
1: राइट
0: तब उसने you know, ऐसी कोई काउंसलिंग की उसे जरूरत नहीं पड़ी.
1: वो इट्स अ टिपिकल केस ना कि ट्रस्ट टूट गया. ये वो टिपिकल केस है ना जो हम कहेंगे कि टूट गया, अब इसको जुड़ने में
0: वही रहीमन धागा प्रेम का वो गांठ बस वो पड़ गई है.
1: अब वो गांठ बनती जा रही है, बनती जा रही है.
0: समवेयर आई थिंक मदर नीड्स टू बी
1: एक्चुअली अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी ये जो ट्रस्ट फैक्टर है आज वो थोड़ा सा मतलब रिसेंटली हमने सुना कि आजकल डिटेक्टिव्स को पेरेंट्स एम्प्लॉय कर रहे हैं या हायर कर रहे हैं कि वो डिटेक्टिव उनके बच्चे के पीछे सारा दिन घूमते हैं. क्योंकि और फिर रात को एक फोन कॉल करके एक पूरी रिपोर्ट मिलती है, आपका बेटा या बेटी यहाँ गए इनसे मिले, ये किया वो किया, इतनी देर इनके साथ स्पेंड किया, व्हाटएवर द चाइल्ड्स entire day routine,
0: My
1: the detective
0: God.
1: is supposed to come and tell the parents. Of course, it's still in the very higher class families who can afford to hire these services. But the fact is, the trend has begun.
0: Paisa kitna kama bhi to rahe hain.
1: Right.
0: You know, middle class has actually grown.
1: True. Lekin wo kamane ke process mein wo bonding nahi hui, to us paise ko is tarah se use karna pad raha hai. To एक बच्चे से हम डायरेक्टली नहीं पूछ पा रहे कि आपका आज का सारा दिन कैसा रहा, और अगर वो बता भी देता है तो हम सोचते हैं पता नहीं सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, और उसके लिए हम एक थर्ड पर्सन को यूज कर रहे हैं जो सारा दिन, मतलब दिस इज वेरी सैड बिकॉज इट शोज के वेयर वी आर हेडिंग, यू नो, क्योंकि अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से ज्यादा ब्यूटीफुल
0: एंड प्योर कोई नहीं,
1: कोई और रिलेशनशिप,
0: माँ रिलेशनशिप तो, एंड लाइक आई वाज रियली टच्ड बिकॉज़ ही वाज वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स हिज मदर, सो ही इज सो हर्ट नाउ,
1: राइट, बट नाउ व्हाट ही विल हैव टू डू इज कि ही विल हैव टू अंडरस्टैंड ना थोड़ा सा आपको अपने, क्योंकि अगेन द थिंग इज कि हम मदर को नहीं चेंज कर सकते, यू नो, अगर हम उनसे बात कर रहे हैं ही हैज टू अंडरस्टैंड ही कांट चेंज हिज मदर, ही कांट गो एंड टेल हर यू नो स्टार्ट ट्रस्टिंग मी, ट्रस्ट डिमांड करने से नहीं मिलेगा, आप किसी को बोलो मुझे ट्रस्ट करो मुझे ट्रस्ट करो, ये नहीं होने वाला है, दूसरे की चॉइस है, मेरी चॉइस है कि मुझे उन्हें ट्रस्ट करना है, सो आई एम ट्रस्टिंग, उन्होंने मुझे कहा है लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन कंडक्ट, अब ये मेरी चॉइस है कि मैंने उसको एक्सेप्ट किया है, द थिंग इज कि जब हम कुछ करना शुरू करते हैं लेट अस अंडरस्टैंड दैट वी चोज इट, यू नो, लेट्स नॉट ट्राई एंड टेल अदर पीपल हम आपकी वजह से कर रहे हैं बिकॉज वी नॉट रियली बे नॉट, हम कभी भी किसी और की वजह से नहीं कर रहे होते हैं, भले अगर मैं ये भी आपको कहूं कि मैं आपके लिए कर रही हूं लेकिन फिर भी ये मैंने चूज किया ना आपके लिए करना, आपने फोर्सफुली जब तक मेरे से आप नहीं करवाते, और कोई भी किसी से कुछ फोर्सफुली तो करा ही नहीं सकता, तो ये सारा दिन दूसरों पर जताना कि हम आपके लिए कर रहे हैं हम आपके लिए कर रहे हैं, इट्स नॉट ट्रू, हम भले इंस्ट्रूमेंट हुए लेकिन हम फिर भी अपने लिए कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है उनके लिए ये करना,
0: अपनी वजह से कर रहे हैं,
1: दैट्स व्हाट आई हैव टू अंडरस्टैंड, तो जब मुझे ये समझ में आ जाएगा दिस इज माई चॉइस Now I like to live that way. You know, अगर वो सोचेगा कि वो रात को 11 बजे अपनी मम्मी की वजह से आ रहा है, he is not going to like the idea. You know, वो अंदर ही अंदर फिर ये choice रहेगी कि मैं might as well फिर 1 बजे आऊँ. That's not the solution. आप खुद choose कीजिए. अगर आपको लगता है कि ये करके you are giving something to your mother, you know, you are making her happy or whatever, so you choose. अगर आपने choose कर लिया, it's your decision. अपने decision को regret नहीं कीजिए. ये आपका डिसीशन है, ये नहीं फिर एक्सपेक्ट कीजिए कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आई विल गो बैक टू द अदर चॉइस, ये तो मतलब ये तो अननेसेसरली अंदर फ्रस्ट्रेशन है,
0: लेकिन वो फिर उसको क्या करना है,
1: यू हैव चोजन टू कम बैक एट 11, यू हैव चोजन नॉट टू ड्रिंक और स्मोक और व्हाटएवर फॉर व्हाटएवर रीजन इवन इफ इट्स योर मदर, लेकिन चॉइस आपकी है, अब आपकी मम्मी इन रिटर्न आपको अभी ट्रस्ट करे या नहीं करेंगे, वह सम टाइम आफ्टर ऑल हमने कुछ एक छोटी मोटी गलतियां की भी तो है ना, उनका मिसट्रस्ट विदाउट रीजन नहीं है अभी, लेकिन हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं अगर, तो जस्ट गो ऑन डूइंग इट अनकंडीशनली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट कि दो दिन में यू शुड एक्सपेक्ट कि सामने वाला चेंज हो जाए, गिव द अदर पर्सन टाइम, और आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है नहीं ड्रिंक करना तब आप कीजिए, और अगर आप वो सोचकर करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि अगर उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया तो माइट एज वेल मैं ड्रिंक करना शुरू कर दूं, ये तो कोई सोल्यूशन ही नहीं हुआ, तो आप अपनी चॉइस से कीजिए एंड यू नो रिमेन इन दैट पॉजिटिव स्टेट कि आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ, इट्स गुड फॉर मी, एंड कंटिन्यू डूइंग इट and wait for her to change.
0: And she will change.
1: She will.
0: The way we said unconditional trust, you know, unconditional love.
1: Absolutely.
0: These are the aspects which condition, कि वो ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूँगा, तो मैं उतना प्यार कर सकता हूँ,
1: right.
0: तो अगर वो मुझ पे विश्वास वापस कर ले, करेंगे, मैं
1: तो
0: कर
1: मैं करूँ, तो नहीं. हम करें, तब वो विश्वास ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. अभी हमारे रिलेशनशिप्स हमेशा इस चीज पर बेस्ड है कि अगर मैं रिसीव कुछ करूंगा तो मैं गिव करूंगा, मुझे आपसे प्यार मिलेगा तो मैं आपको प्यार दूंगा, आप मुझे रिस्पेक्ट करेंगी तो मैं आपको रिस्पेक्ट करूंगी. कीप ऑन वेटिंग,
0: कीप
1: ऑन वेटिंग, इट इज नेवर
0: एंडिंग.
1: द सिंपलेस्ट थिंग इज आप देते जाइए विदाउट एक्सपेक्टिंग लेने का, आप देते जाइए, लॉ ऑफ नेचर आपको वापस मिलेगा.
0: ब्यूटीफुल.
1: आप रिस्पेक्ट देते जाइए
0: एंड
1: ट्रस्ट देते जाइए
0: एंड ऑलवेज रिमेम्बर दैट ये दे हम अपने कारण रहे.
1: एंड ये भी याद रखें कि मैं रिस्पेक्ट अपने लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उन्हें रिस्पेक्ट करना, मैं कर रहा हूँ, नॉट दैट मैंने तो दिया लेकिन उन्होंने तो नहीं किया, तो आप मत कीजिए फिर. आप उनसे लेने के लिए रिटर्न में कर रहे थे? नहीं, आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है उनसे रिस्पेक्ट करना. ये जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है अपनी हर थॉट की और फीलिंग की, दिस कैन मेक माय लाइफ वेरी सिंपल एंड इट कैन मेक माय लाइफ विदाउट एक्सपेक्टेशंस.
0: ब्यूटीफुल. एंड इनफैक्ट द वे वी यू नो, ये सारी जो गलत मान्यताएं हैं कि मैं ये कर रहा हूं ताकि वो ऐसा करें या मैं ऐसा इसलिए कर रहा ताकि उन्होंने कहा है,
1: right.
0: ये कंसेप्ट एक्चुअली बहुत क्लियर हो जाना चाहिए.

बहुत बहुत शुक्रिया. आज हमने एक्चुअली दो ऐसे रियल लाइफ केसेस लिए जो एक जहां हमने ये देखा कि कुछ है ही नहीं तब भी मिसट्रस्ट है, और जहां एक ट्रस्ट टूटी तो अब वो जो हैंकरिंग है कि मेरी वो ट्रस्ट वापस लौटे तो उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा. थैंक यू सो मच शिवानी. जी हाँ, हमें बहुत कुछ ऐसा पता चल रहा है जिन पर हम अभी तक बिलीव करते आ रहे थे, जिन्हें मान रहे थे कि यही सही है, वो मिथ्स टूटते जा रहे हैं. इसी से हमारा पॉजिटिव जो एटीट्यूड है, पॉजिटिव थॉट्स का जनरेशन होगा. लेकिन उसे किस तरह से प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट करना है, कंटिन्यूस अपने आप को याद दिलाते रहना है, क्या छोटे छोटे वो तरीके हैं जो जिंदगी में अपना सकते हैं, यही रहेगा हमारा मुद्दा अगली कड़ी का. तो आप भी हमारे साथ बने रहिए. अगर आपके पास भी कोई ऐसी बात है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, किसी सवाल का जवाब तलाशना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं. फोन कीजिए 9873666555 पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो इसी के साथ वक्त है कि आज आपसे विदा लें, लेकिन इस दुआ के साथ और इस वादे के साथ कि जिन मूल्यों पर, जिन पॉजिटिव थॉट्स पर हम आज तक बात करते आ रहे हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और मैं अपना मास्टर, अपना मालिक खुद बनूंगा. अब दीजिए इजाजत. नमस्कार.